कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने के प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफ एम 103.1 MHz और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू, आकाशवाणी ईटानगर के।

स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जून महीने का मंगलवार दिन और तारीख है 9। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरी प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीड में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक ती तंगजंग और तकनीकी अभियंता पीबी दोले। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट। 6:40 सुनिए कालो दालिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए पता नहीं दैलेट न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इंटरटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एंगेजिंग अंदाज में 7:35 सुनिए तागिन दैलेट न्यूज।

0: ईटानगर, इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9 बजे फिर से हिंदी न्यूज। की 5 मिनट रहेगा इंग्लिश न्यूज। 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्में कब शप जहां होंगे, बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ऑडिटेड रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड जहां में बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत जिनके साथ आप महसूस करेंगे एक अलग ही सुकून। तो आइए सुनते हैं आज के भक्ति गीत।

0: दोस्तों ये था भक्ति गीत या आकाशवाणी चैनल का रन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे गालो न्यूज़।
1: सी आकाशवाणी ठानगर है तनका तमरो कम जाबम दोला हेलो पोल गालो किंगा नाने गाले अरसो का गालो मेकेन अगो मेनेन जी रे बेनकेन मेन जी नंगो गुमार लेंदो हेलो पोल गालो पिने तरकम ने पादो कोला आकाशवाणी अमरो अचम किंगा दिता कम ने पालों तो।

1936 maro galo go Indian State Broadcasting Service amne All India Radio amla maintain kuba amdula sigi agom sigi amumba dutasi masigi tanimoko ga yon atoben kate kaba dukum ka dudu egam abana ru amne nechi ba rabam duwa don thari bagom sigi menji na go amtu mentala sadin paro ko kuba 1956 ago sigim leken go kuda akaswani amla maintain toku ओके गोला इजा गोब नरु गाजे अजेन जाब आकाशवाणी सिगी रदुना के अमला मेंकेन जीतु प्राइम मिनिस्टर निर्म नरेंद्र मोदी लोना लोला निमा ओपेन गदग लगा बा न्यूरु गोला न्यूनी गोब कद जाब अगर रिम ने काकुर दो कुला मेन लासो गो निमा ओपेन हमने नमनासु मोजिला इसी कोम गोजिला ओका पाइकोना लब मोस्ट ऑफ मकम दुला सिगिम ने गरीब खलियान के लदु बिंदुला कागुर तोन मकम तो ओका मेंथाला एंटी योद्या एकोम गवर्नमेंट का पहले लोक निमा अमने यो ना फैसिलिटीज को कागुर केंद्र द एगम ने दिन सिजाब कागुर दोना के अमला एर पाता तो नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का पहले लोक सीबीएसई अमने इजागा अलीबा क्लास 12 अवगत का परीक्षा जिला मार्क पानम अमने स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लो मार्क अब जिकिन जिबिन पाकु अमला दिल्ली हाई कोर्ट लो पुई आयल को जिलिक तो सिक्किम काला सीबीएसई का पहले लोक जस्टिस एन बी कृष्णा ओक मधु जैन बुनी मेंढक सिला सिक्किम कादुल हाई कोर्ट हिलोपोल गा लोरेगोला लोनी तारीख लो कोर्ट हेयरिंग अम निरुद्ध बामला मेंबक जीतो अरुणाचल प्रदेश सो का इजागा दुमिन सिनाम आफ्रा एक्ट 1978 गर रूल्स अम ने हाई पावर कमिटी गद गा कबा दू गर रिपोर्ट अम ने मोदो कोला चीफ मिनिस्टर निम पेमा कांदू गलो जिले का को सो को जस्टिस रिटायर बीफी कटके ने चेयरमैन ब पार्लियन तोला मुक अरालो रिपोर्ट ओ का रूल्स अम ने मोलेन थुन मकय अम दाख रिपोर्ट अम लारिक दोला चीफ मिनिस्टर निम पेमा कांदू मिनिस्टर मामानातुम वालो राजा ओका केंटो जिली ने कम रूल्स मोदाक लो कादुम तपा नाम ने क्वेक तातु अरुणाचल प्रदेश सोक आकेन चचक राज्यसभा सीट लगा बनारू बीजेपी निदुम गदिगा लेदुक मिन्सी नाम ने कादु लालो नलो लो नर्म तय तका कम दागरब तो सिक्किम काला बीजेपी का पहले लोक ऑफिशियल कैंडिडेट बमला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लो नॉमिनेशन पेपर हम जिलिक तो दोनों लो चीफ मिनिस्टर निर्म पेमा कांदू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर निर्म छोना मेन ओका स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग मनु लोदुम गतो सोगो चीफ मिनिस्टर मेनकेन ला ताई तका ग लकलो का पॉलिटिक्स लो रचाला मय गा स्टेट ओका कम्युनिटी लगा बदिन जाब मना मन मने कादुल अंबदा राज्यसभा लोकम ngoi स्टेट लगा ब तोमिन जिर पमला अर पाता तो तन गा दन गालो मेनके नागम सिन आकाशवाणी ठानगर लोक तफा दो लोन लो लरन से प्रदेश ग एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निगम डॉक्टर सोनोवा स्वरूप ला नीलम यापी थाना मुनी दुबम दोला एमओयू इलु तागे कागोमा का एमबीजी तो सोगो मेंटम ला इजा अरुणाचल सिगी रिसर्च इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट ओके स्टार्टअप रिन गदिक लगा पर माज बे कंपर का दे दो अमला मेंकेन जीतो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट गगीबा सर्कल लो दीदिरा पीएमजीएसवाई बदाम ने लालाई ग कुनमा दोलो छामी गोबा नेना मानम रूपकुमार दुदु कुना का अमला गीबा सर्कल का जेटपीएम मायुम दोबिन मेंकेन जीतो इजा बदा काकु मान में लोमना को काला कुछ इन अगुम नेम्पो कुमाब दूधे दाक एम दूला अम्बी नाम पर गलिक नकोम आप कुमाब रुदूला दोलुआ माज में इंद्र दूना के अमला निगम गादम दम में केंजी तो इंडिया का अफगानिस्तान का टेस्ट क्रिकेट रिका मिंच को लो इंडिया ने अफगानिस्तान ने 300 रन लोक पर पक तो इंडिया ने 564 रन को पगर ला अफगानिस्तान ने 152 लोला 112 लो ऑल आउट तो दोनों लो इंडिया का कैप्टन शुभमन गिल 126 रन को पहला ओका केएल राहुल 100 रन को पहतो मेंटाला ऋतु बरिना लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुतोर 33 रन को पहम गोला 6 विकेट गो लातो टेस्ट क्रिकेट सिगिम ने चंडीगढ़ बलो ऋतु मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर है 20 डिस्ट्रिक्ट दो येलो अलर्ट जोन लो जिले तो सगो दोर दोगुम निदवा तीत बो ओबे दे दो अमला मेंकेन जीतो क तानगा द सेवा गलो मेंकेन आगो म अगा तनगादम लकेंगो दा रकम जाबम दोला सिरवा गालो पिगो यो नेगुन गोरब दोला काजिगोनो तातु यारो बनली

दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी आप सुन रहे थे कालो दालिक में हमारा मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। और अब जैसे ही सुबह के पहले सुनहरी किरण हमारे ईटानगर की हसीन पहाड़ियों को छू रही है, वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे का। दोस्तों, हर दिन हमें कुदरत से 24 घंटे नए मिलते हैं, लेकिन हम दिन का पहला घंटा कैसे बिताते हैं वही डिसाइड करता है कि हमारे बाकी का दिन कैसे जाएगा। इसीलिए आज का शो हमने पूरी तरह से डेडिकेट किया है आपकी तंदुरुस्ती को, आपकी तो चलिए इस हसीन सुबह की शुरुआत करते हैं एक बेहद मीठे गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम और आपके साथ बनी हुई हूं आपके आरजे याजू, आपके फेवरेट मॉर्निंग शो सुबह सवेरे में। दोस्तों, आज हमारी बॉडी और माइंड को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है योगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि योगा का मतलब होता है अपनी बॉडी को मुश्किल तरीकों से मोड़ना या घंटों तक कठिन आसन करना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगा एक साइंस है, एक आर्ट है, अपनी बॉडी, अपने माइंड और अपने सांस को एक साथ लाना। जब आप योगा करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर रहे होते, आप अपने सोल को प्योर कर रहे होते हैं। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सही तरीके से सांस लेना ही भूल जाते हैं, जिससे स्ट्रेस और थकान बढ़ती है। तो चलिए, जहां भी हैं आप, अगर आप अभी बेड पर बैठे हैं या किचन में हैं, बस एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। अपने स्पाइन को सीधे खींचिए, शोल्डर्स को हल्का सा पीछे रोल कीजिए और मेरे साथ एक गहरी लंबी सांस नाक से अंदर लीजिए। फील कीजिए कि पूरी पहाड़ियों की ताजा हवा आपके अंदर जा रही है। थोड़ा सा होल्ड कीजिए और अब धीरे धीरे उसे बाहर छोड़िए। रोज सुबह अगर आप सिर्फ 15 मिनट निकाल कर अनुलोम विलोम, कपालभाति या ब्रह्मचारी प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह आपके दिमाग के सेल्स को जगाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और ब्लड प्रेशर को जड़ से मिटा देता है और आपको पूरे दिन के लिए एक काम फोकस और पॉजिटिविटी का गिफ्ट देता है। योगा किसी एक के लिए नहीं, हर उम्र के इंसान के लिए जरूरी है। तो आज से अपना शेड्यूल में योगा को टॉप प्रायोरिटी जरूर बनाइए। चलिए, सुकून के बाद सुनते हैं हमारा दूसरा गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और आपके साथ बनी हुई हूँ आपके अपने आरजे याजू आपके फेवरेट मॉर्निंग शो सुबह सवेरे में। अभी हमने बात की हमारे माइंड को काम करने की योगा के जरिए, लेकिन अब बारी है हमारे मसल्स को जगाने की, हमारे बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट लाने की। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में।

मुझे बहुत से कुछ लोग अक्सर पूछते हैं कि हम सुबह एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं पर हमारे पास घंटों जिम जाने का वक्त नहीं होता या हमारे आसपास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है। तो दोस्तों आज आपको ये आपकी ये दोस्त आपको बताएंगे एक बहुत ही सिंपल रूल, इसे कहते हैं 20 मिनट रूल। आपको फिट रहने के लिए बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, आपको बस अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है और इसके लिए सिर्फ 20 मिनट काफी है। अगर आपके घर के पास थोड़ी सी जगह है तो सुबह की हल्की धूप में 20 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेजी से चलिए। अगर वॉकिंग नहीं करना चाहते तो अपनी छत पर या रूम पे में ही हल्की सी स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा सा फ्री हैंड स्क्वाट्स कीजिए या जंपिंग जैक्स कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छे से होता है और सबसे मजेदार बात हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, इन्हें हम हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सुबह का सिर्फ 20 मिनट का पसीना आपको पूरे दिन खुश, एनर्जेटिक और एक्टिव रखेगा। आपको डोपामाइन हिट मिलेगी जिससे आपका काम में मन लगेगा और सुकून की नींद आएगी। तो चुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और थोड़ा सा मूव कीजिए। चलिए इस एनर्जी को और ऊपर लेकर चलते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही शानदार और खूबसूरत गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अर्न एफएम ईटानगर। दोस्तों माइंड को माइंड काम हो गया, बॉडी एक्टिव हो गई और अब आ रही है आती है हमारी अंदरूनी सिस्टम की यानी हमारी डाइट और डेली हैबिट्स की। तो चलिए अब वक्त हो चुका है आज के स्पेशल हेल्थ टिप्स का, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। हमारे सबकी आदत होती है कि सुबह उठते ही हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक गरम गरम दूध चाय या फिर एक कप करवाई कॉफी। लेकिन दोस्तों साइंटिफिकली हमारी बॉडी सुबह के वक्त बहुत एसिडिक होती है और इसमें जब हम चाय या कॉफी डालते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आज की सबसे बड़ी हेल्थ टिप्स ये है, सुबह उठते ही सबसे पहले एक बड़ा ग्लास गुनगुना पानी पीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस गुनगुने पानी में आधा लेमन का रस और एक चम्मच शहद मिला लीजिए। इसके फायदे सुनिए, ये आपके स्टमक को एकदम क्लीन करता है, रात भर के सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को हाई गियर में डाल देता है, जिसे आप जो कुछ भी दिन भर खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। साथ ही साथ ये आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। पानी पीने के आधे घंटे बाद ही अपने चाय या कॉफी पीजिए। छोटी सी आदत है पर आपको आपका पेट आपको रोज थैंक यू कहेगा।

दोस्तों हर सुबह अपने साथ एक नए सवेरे, नई उम्मीद और नए ज्ञान लेकर आते हैं। और हमारे शो का मकसद यही है कि हम आपकी सुबह को ना सिर्फ म्यूजिकल बनाएं, बल्कि आपको दुनिया भर की रोचक बातों और हमारे स्टेट के ताजा तरीन अपडेट से भी रूबरू करें। आज के स्पेशल एपिसोड में हम गुजरने वाले हैं इतिहास के पन्नों से। हम बात करेंगे ऐसी बड़ी घटनाओं की जिन्होंने हमारे भारत देश को बदला, और फिर चलेंगे सरहद पार दुनिया की हाल जानने। और शो के एंड में हम बात करेंगे द अरुणाचल टाइम्स की आज यानी 9 जून 2024 की सबसे बड़ी सुर्खियों पर बड़े ही विस्तार से। तो अपनी चाय की चुस्की दीजिए,

वेलकम बैक दोस्तों, ये है कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। चलिए सबसे पहले कदम रखते हैं अपने देश के इतिहास के सफर पर। आज 9 जून है और आज का दिन इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। नजर डालते हैं हमारे देश के उन बड़े इवेंट्स पर जिन्होंने इंडिया पर एक गहरी छाप छोड़ी।

9 जून 1900 को हमारे देश के महान ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स और लोक नायक बिरसा मुंडा ने रांची जेल में अपनी आखिरी सांस ली थी। उन्होंने ब्रिटिश रूल और उनके ऑपरेसिव लॉज के खिलाफ उलगुलन यानी एक बहुत बड़ा ट्राइबल रेबेलियन शुरू किया था। सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने जो क्रांति शुरू की वो आज भी पूरे देश के ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उन्हें आदर से धरती आबा यानी फादर ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। 9 जून 1964 को इंडिया को अपना दूसरा प्राइम मिनिस्टर मिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री के पद संभाला था। उनका जय जवान जय किसान का नारा आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उनकी सादगी और उनका नेतृत्व बेमिसाल था।

आज के दिन 1949 में इंडिया की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी का जन्म हुआ था। उन्होंने न सिर्फ पॉलिसिंग के तरीकों को बदला बल्कि तिहाड़ जेल में उनके रिफॉर्म्स को दुनिया भर में सराहा गया। वो हर उस लड़की के लिए एक मिसाल है जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। 9 जून 2011 को इंडिया ने अपने सबसे मशहूर और अवांगार्ड पेंटर मकबूल फिदा हुसैन को खो दिया था। उन्हें पिकासो ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। उनकी पेंटिंग्स ने इंडियन आर्ट को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दिलाई थी। देश के इस महान इतिहास को याद करने के बाद चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनिए ये गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और मैं हूं आपकी आरजे याजू आपके फेवरेट शो मॉर्निंग इन 14 में। चलिए दोस्तों इंडिया की बात अब चलते हैं सरहद पार और बात करते हैं ग्लोबल हिस्ट्री के उन बड़े इवेंट्स की जिन्होंने ने पूरी दुनिया को किसी न किसी तरह बदल दिया और या उन्हें एक नई दिशा दी।

9 जून 1934 को दुनिया के सबसे आइकॉनिक कार्टून कैरेक्टर्स में से एक डोनाल्ड डक ने पहली बार स्क्रीन पर डेब्यू किया था वॉल्ट डिज्नी की कार्टून फिल्म द वाइज लिटिल हैन में। अपनी यूनिक आवाज और गुस्से वाले बिहेवियर से उन्होंने हर बच्चे और बड़े का दिल जीत लिया और वो आज 19 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। हॉलीवुड और दुनिया सिनेमा की हिस्ट्री को बदलने वाले फिल्म जुरासिक पार्क जिसे स्टीवन स्पिलबर्ग ने डायरेक्ट किया था आज ही के दिन 1993 में वाशिंगटन डीसी में प्रीमियर हुए थे। इस फिल्म ने पहली बार सीजीआई और एनिमेट्रॉनिक्स का ऐसा यूज दिखाया कि लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे थे। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लिटरेचर की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम चार्ल्स डिकेंस, जिन्होंने ऑलिवर ट्विस्ट और ए टेल ऑफ टू सिटीज जैसे अमर नॉवल

0: लिखे आज ही के दिन 1870 को इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। उनकी कहानियां आज भी स्कूल के सिलेबस से लेकर बड़ी फिल्मों तक भी जिंदा है। म्यूजिक लवर्स के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। 9 जून 1915 को लेस पॉल का जन्म हुआ था, जिन्होंने सॉलिड बॉडी इलेक्ट्रिक गिटार का इन्वेंशन किया था। आज जो हम रॉक पॉप और मॉडर्न म्यूजिक में गिटार की शानदार आवाज सुनते हैं, वो इन्हीं की बदौलत है। गिब्सन लेस पॉल गिटार आज भी हर बड़े म्यूजिशियन की पहली पसंद है। दुनिया भर की इन रोचक बातें के बाद चलिए एक और गाना सुनते हैं और इसके बाद सीधे चलेंगे आज के सबसे ताजा न्यूज बुलेटिन पर। स्टे ट्यून्ड।
1: द बेस्ट गिफ्ट फॉर पापा मम्मी, सारेगामा कारवां।

दोस्तों, अब वक्त हो चुका है हमारे आज के सबसे बड़ी खबरों पर बड़े ही विस्तार से यानी पूरे डिटेल्स में नजर डालने का। चलिए सीधे चलते हैं अरुणाचल टाइम्स की आज की सुर्खियों की ओर। द पहली हेडलाइन से एप्टी टू गो ऑन इन्फिनिट पेन डाउन स्ट्राइक फ्रॉम 15 जून। हमारे स्टेट के एजुकेशन सेक्टर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार को एक बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स और उनकी जो ग्रीवेंसेस है उन्हें जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले 15 जून से स्टेट वाइड इनडेफिनिट पेन डाउन स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। इस स्ट्राइक की वजह से

दोस्तों, इस रिपोर्ट में स्टेट के फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने, हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स के राइट्स को सिक्योर करने और उनके सर्विस रूल्स में जरूरी बदलाव लाने के लिए कई बड़े सजेस्टिव्स दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये नए रूल्स इम्प्लीमेंट होते हैं तो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और बेहतर ढंग से हो पाएगा और रेंजर्स को काम करने में आसानी होगी।

दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे तागिन दायलेक में हमारा मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। तागिन दायलेक के बाद अब वक्त हो चुका है एक ऐसे सफर पर निकलने का जहां बाहर की इस तेज बारिश के बीच यादों के बादल छा जाएंगे और संगीत की बूंदे आपके दिल को छू लेंगे। शुरू हो चुका है आपका और मेरा हम सफर मॉर्निंग शो सदाबहार। अरुण एफएम पर ट्यूनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, घर के बड़े बुजुर्गों को और पूरे अरुणाचल को आपके इस दोस्त आपके होस्ट आरजे याजू का दिल से प्यार भरा नमस्कार और एक बेहद खुशनुमा मॉनसून स्पेशल गुड मॉर्निंग। दोस्तों सदाबहार का मतलब ही होता है जो हर मौसम में खिला रहे, जो हमेशा ताजा रहे। बाहर चाहे कितनी भी तेज बारिश हो रही हो या हमारे इस शो में गुनगुनाहट हमेशा बनी रहेगी। आज के इस एपिसोड में हम गुजरने वाले हैं गुजरे जमाने के कुछ बेहद हसीन और एवरग्रीन गीतों के गुलिस्तान से, और क्योंकि बाहर मौसम ने बहुत ही जोरदार करवाहट ली है तो हम बात करेंगे आज के मौसम के मिजाज पर और जानेंगे कि हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बारिश का क्या हाल है। तो अपनी गर्मा गर्म चाय या कॉफी की प्याली उठाइए, थोड़े कंफर्टेबल हो जाइए और इस रिमझिम मौसम में शुरुआत करते हैं इस पहले बेहद लाजवाब सदाबहार गाने के साथ।

0: है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: बिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप क्यों चाहे।

वेलकम बैक दोस्तों, सदाबहार में दोस्तों अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। और जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, आज सुबह से हमारे ईटानगर में सूरज देवता का दर्शन बिल्कुल नहीं हुए हैं। सुबह से ही मौसम एकदम पैक है और रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यानी बहुत ही जोरदार मूसलाधार बारिश चल रही है। इस लगातार होने वाली बारिश की वजह से आज ईटानगर के तापमान काफी गिर गया है। आज मैक्सिमम टेम्परेचर मुश्किल से 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा, जिससे दिन में भी अच्छी खासी ठंडक फील हो रही है। वहीं रात का तापमान गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ह्यूमिडिटी आज 95% से ऊपर है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक आने वाले अगले 24 से 48 घंटों तक ईटानगर और इसके आसपास के इलाकों में ये हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यू ही जारी रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर निकलने से बचें, और अगर निकलना ही है तो रेनकोट और अम्ब्रेला के बिना बिल्कुल मत निकलिए। रोड्स पर पानी भरा हुआ है और विजिबिलिटी थोड़ी कम है, इसीलिए गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइए। मौसम के इस ठंडे और जोरदार हाल के बीच चलिए लौटते हैं यादों की गलियों में और सुनते हैं हमारा आज का दूसरा हसीन गाना।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टानगर अरुण एफएम और चल रहा है आपका पसंदीदा शो सदाबहार। मैं हूं आपकी दोस्त याजू। टानगर के इस मूसलाधार मॉनसून के बाद चलिए अब नजर डालते हैं हमारे ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश के मौसम पर, क्योंकि लगभग पूरे स्टेट ही इस वक्त बड़ी बारिश की गिरफ्त में है। सबसे पहले चलते हैं हमारे हाई ऑल्टीट्यूड रीजन यानी ऊंचे पहाड़ी इलाकों की तरफ, जैसे तवांग, बोमतिला और जिरो। दोस्तों वहां लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तवांग में आज मैक्सिमम टेम्परेचर मुश्किल से 20 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक ही जाएगा और रात को टेम्परेचर गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस या 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से रोज पर विजिबिलिटी ना के बराबर है। लैंडस्लाइड का भी काफी खतरा बना हुआ है, इसीलिए उन रूट्स पर ट्रैवल करने वाले हमारे सभी गाड़ियों के ड्राइवर्स बहुत सावधानी बरतते रहे। वहीं अगर हम बात करें हमारे फुटहिल और वैली रीजन्स के, जैसे पासीघाट, नामसाई, चांगलांग और तेजू, तो वहां भी मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। इन ईस्टर्न और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। कुछ निचले इलाकों में फ्लैश फ्लड्स या पानी बढ़ने की खबरें हैं और हमारी जो नदियां में जैसे सियांग, लोहित और नोवादेन, उनका वाटर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी को नदियों के पास न जाने की हिदायत दी है। तो कुल मिलाकर हमारे पूरा अरुणाचल इस वक्त बारिश की चादर में लिपटा हुआ है। और आप जहां भी हैं, प्लीज सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और मौसम के हिसाब से ही अपना शेड्यूल बनाए। चलिए दोस्तों, इस ठंडक भरे मौसम में गर्माहट घोलते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी सदाबहार गीत से। इस मेलोडियस ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मैं लौट कर आती हूँ शो के क्लोजिंग सेगमेंट में।

0: दोस्तों ये था सदाबहार। उम्मीद है इन सुरों ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होंगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और

0: किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी न करें। अमर उजाला ने दिया है वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दामबुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivale after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today.

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग केंद्र से हमारी नेशनल और रीजनल न्यूज बुलेटिन। और अब जब आप पूरी दुनिया और देश विदेश की खबरों से अपडेटेड हो चुके हैं तो वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम का, जो कि बहुत एजुकेशनल मॉर्निंग सेगमेंट है, यानी आपका और मेरा अपना शो हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

अरुण एफएम पर ट्यून इन मेरे सभी प्यारे दोस्तों को, स्कूल और कॉलेज जाने वाले दोस्तों को, ऑफिसर्स और घर पर बैठे सभी लिसनर को, आपके आरजे याजू का दिल से प्यार भरा नमस्कार और एक बेहद शानदार एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हेलो ईटानगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। और आज का दिन पता है क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज का हमारा टॉपिक आपको सीधे आपके बचपन के उन सुनहरी दिनों में लेकर चला जाएगा जहां ना कोई फिक्र थी, ना कोई टेंशन, बस हर वक्त मस्ती होती थी। आज 9 जून है और आज ही के दिन कार्टून की दुनिया के एक ऐसे कैरेक्टर का जन्म हुआ था जिसे देखकर हम सब बड़े हुए हैं। एक ऐसे कैरेक्टर जो हमेशा गुस्से में रहता था पर उसकी बातें हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती थी। जी हाँ, हम बात कर रही हूँ हमारे सबके प्यारे डोनाल्ड डक की। आज के इस एपिसोड में हम डोनाल्ड डक की पूरी हिस्ट्री को भेदभाव से अलग पूरे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ये सब शुरू हुआ कब शुरू हुआ, इसके पीछे कौन सा दिमाग था और इसने हमारी पॉप कल्चर पर क्या इम्पैक्ट डाला। तो अपनी सुबह की चाय का लुफ्त उठाइए और चलिए इस नॉस्टैल्जिक सफर की शुरुआत करते हैं इस पहले बेहद खूबसूरत और रिफ्रेशिंग गाने के साथ।

आपका फिर से स्वागत है हेलो ईटानगर में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एजुकेशनल कैप्सूल और चलते हैं थोड़ा पीछे इतिहास में। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 9 जून 1934 को डोनाल्ड डक ने पहली बार स्क्रीन पर डेब्यू किया था। वो साल था 1934 और वॉल्ट डिज्नी की एक शॉर्ट कार्टून फिल्म आई थी जिसका नाम था द वाइज लिटिल हैन। उस फिल्म में डोनाल्ड डक एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के रूप में आया था, जहां वो एक लेजी डक बना था जो काम करने से बचता था। लेकिन इस कैरेक्टर के पीछे दिमाग किसका था? इसके पीछे था द लेजेंडरी वॉल्ट डिज्नी। उन्होंने देखा कि उनका जो मेन कैरेक्टर था मिकी माउस, वो बहुत ही सीधा, पोलाइट और हर चीज परफेक्ट करने वाला कैरेक्टर बन चुका है। वॉल्ट डिज्नी चाहते थे कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाए जिसमें थोड़ी कमियां हो, जिसे गुस्सा आता हो, जो थोड़ा नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी लोग उसे प्यार करें। और वहीं से जन्म हुआ डोनाल्ड फॉन्टलोर डक का, जो उनका पूरा नाम है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों? डोनाल्ड डक की जो आवाज थी वो आइकॉनिक डक लाइक क्वैकिंग वॉइस वो दी थी एक आर्टिस्ट ने जिसका नाम था क्लेरेंस नाश। क्लेरेंस नाश ने एक बार वॉल्ट डिज्नी को एक छोटे बच्चे की तरह डक वॉइस में एक पोएम सुनाई और वॉल्ट डिज्नी ने तुरंत कहा, मिल गया, यही है हमारे डोनाल्ड डक की आवाज। क्लेरेंस ने लगभग 50 सालों तक डोनाल्ड डक को अपनी आवाज दी थी। चलिए इस रोचक जानकारी के बाद थोड़ा सा संगीत का लुत्फ उठाते हैं। सुनिए ये गाना और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि डोनाल्ड डक कितना बड़ा सुपरहिट बना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। मैं हूं आपकी आरजे याजू। दोस्तों, 1934 में एक छोटे से रोल से शुरू करने के बाद टोनल तक ने जो सफर तय किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। देखते ही देखते टोनल तक मिकी माउस से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्यों? क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा सा टोनल डक छिपा है। जब हमें गुस्सा आता है, जब हमारा काम बिगड़ जाता है, जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो हम बिल्कुल डोनल की तरह बिहेव करते हैं। लोग उनसे खुद को कनेक्ट कर पाते थे। टोनल डक इतना बड़ा हिट हुआ कि उन्होंने मिकी माउस से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनके नाम पर लगभग 150 से ज्यादा थियेटिकल शॉर्ट फिल्म्स हैं। और दोस्तों, उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड द ऑस्कर्स में टोनल डक की फिल्मों को 8 बार नॉमिनी मिला और 1943 में उनकी एक फिल्म ने एकेडमी अवार्ड ऑस्कर भी जीता। इतना ही नहीं, हॉलीवुड की मशहूर वॉक ऑफ फेम पर टोनल डक के नाम का एक अपना स्टार भी है। नॉस्टैल्जिया की बात करें तो 90s के बच्चों को अच्छे से याद होगा जब हर संडे सुबह दूरदर्शन पर डकटेल्स कार्टून आता है। जिंदगी है एक तूफान, यहां वहां

0: डकटेल्स। वो उनके चौदह दिन तीन भतीजे हुए, जुए एंड लुई और उनके रिच अंकल अंकल स्क्रूग मैकडक की कहानियां हमारे बचपन का सबसे हसीन हिस्सा थी। डोनाल्ड डक ने हमें सिखाया कि चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी बार आप फेल हो जाओ, आपको हार नहीं मानना है, बस उतना है अपना गुस्सा निकालना है और फिर से ट्राई करना है। चलिए दोस्तों, इस प्यारी सी दास्तां के बाद सुनते हैं हमारा आज का तीसरा और आखिरी गाना, फिर लौट कर आते हैं क्रॉसिंग पर।
1: The best gift for Papa.

तो दोस्तों, आज का हेलो इटाना के स्पेशल एजुकेशनल सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे 1934 में शुरू हुआ एक छोटा सा गुस्से वाला डग आज पूरी दुनिया के दिलों पर राज कर रहा है। आज डोनाल्ड डग पूरे 92 साल के हो चुके हैं, पर उनका चार्म आज भी एकदम नया है। उम्मीद करती हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसने आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई होगी। जाते जाते बस यही कहूंगी दोस्तों कि लाइफ में चाहे कितनी भी अप्स एंड डाउन्स आए, गुस्सा आना नेचुरल है, पर उसके बाद मुस्कुराकर आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है।

0: दोस्तों, ये तो हेलो इटानगर। उम्मीद है आपने इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। यह आकाशवाणी इटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात

0: मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपीश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई। दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने बताया कि अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी हिस्सा ले रही है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. The Ministry of Home Affairs said the launch of Land Portal Management System will be a landmark step in India's move towards a modern, technology-enabled border management system. The International BRICS Agriculture Conference is set to begin in Indore, Madhya Pradesh today. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the conference. These include Brazil, China, Russia and South Africa. More from our correspondent.
2: Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part. These include Brazil, China, Russia and South Africa. The conference runs till June 13. It begins with the meeting of the Agriculture Working Group. Key topics include food security, farm innovation, climate-friendly farming, agriculture trade and empowering small farmers. On June 12, a special dialogue among agriculture ministers will be held. It will focus on food security through small farmers, women and youth. On June 13, the main ministerial meeting of BRICS nations will take place. A joint document on agriculture cooperation and innovation will be prepared. Foreign delegates will also get a taste of Indore's rich culture and heritage. They will visit historic sites like Rajwada, Chappan Dukan, Sarafa and Mandu. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.

दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अभी अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से हमारा नेशनल न्यूज बुलेटिन। देश और दुनिया के बड़े मुद्दों के बाद अब वक्त हो चुका है एक ऐसी दुनिया में कदम रखने का जहां चकाचौन है, ग्लिट्स है, ग्लैमर है और ढेर सारा ड्रामा है। शुरू हो चुका है आपका अपना सबसे स्पाइसी सेलिब्रिटी शो फिल्मी कपशप।

क्या चल रहा है, कौन सी फिल्म हिट हो रही है, किस सेलिब्रिटी का किसका साथ पंगा चल रहा है और इस हफ्ते ओटीटी पर क्या बवाल मचने वाला है, ये सब लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। जून 2026 का महीने चल रही है और इस वक्त बॉलीवुड के लगभग 1400 करोड़ रुपए दाव पर लगे हुए हैं क्योंकि बैक टू बैक बड़ी फिल्में लाइनअप है। आज के इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चल रही डोंट ट्री की गरम गरम कॉन्ट्रोवर्सी पर नजर डालेंगे। कल

ड्रॉप होने वाली है आलिया भट्ट के मेगा टीजर पर और करेंगे कुछ बड़ी वेब सीरीज के ऑनेस्ट रिव्यूज। तो हो जाइए तैयार बॉलीवुड की हर एक सिलसिलेवार खबर को पूरे डिटेल में जानने के लिए। चलिए शो का आगाज करते हैं इस पहले धमाकेदार चार पांच गाने के साथ।

वेलकम बैक टू फिल्मी गपशप दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टिंसल टाउन की, उस कंट्रोवर्सी की जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच चल रही डोंट ट्री कंट्रोवर्सी की। रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर सिंह का डोंट ट्री से एग्जिट हो चुका है और उसके बाद मामला काफी गर्म है। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनी एम्प्लॉयज ने रणवीर सिंह के खिलाफ एक नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव इश्यू कर दिया। पूरे इंटरनेट पर आग लग गई कि क्या रणवीर सिंह बैन हो गया है। लेकिन अभी अभी ताजा अपडेट यह है कि रणवीर सिंह ने इस फिल्म वर्कर्स बॉडी को एक कड़ा लीगल नोटिस भेज दिया है और उनके लॉयर्स ने साफ कहा है कि ये सब गलत है। यहां तक कि कंगना रनौत ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि जब आप सक्सेस पाते हैं तो दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। लोग अब पुराने टीजर देखकर रणवीर को ट्रोल कर रहे हैं, पर देखना यह होगा कि क्या फरहान अख्तर और रणवीर के इस झगड़े को सुलझा पाते हैं या नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, पर पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनिए ये शानदार ट्रैक।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम और चल रहा है आपका फेवरेट शो फिल्म द गपशप। दोस्तों ट्रेड एक्सपर्ट इस वक्त टेंशन में है क्योंकि जून 2026 बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे कम्पिटेटिव महीना बन चुका है। पूरे 1400 करोड़ रुपए दाव पर लगे हैं क्योंकि इस महीने 9 बड़ी फिल्में आपस में टकराने वाली है। स्क्रीन्स के लिए आपस में लड़ाई चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं आने वाली 19 जून को रिलीज होने वाले फिल्म कॉकटेल 2 की, जिसमें रश्मिका मंदाना, क्रिति सनन और शाहिद कपूर का एक बहुत ही फ्रेश और क्वर्की रोमकॉम लेकर आ रहे हैं। और ठीक उसके बाद 26 जून को बवाल मचाने आ रही है अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और संजय दत्त की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल। ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि अगर ये सारी फिल्में एक के बाद एक आएंगी तो एक दूसरे का बिजनेस जरूर काटेंगी, पर ऑडियंस के लिए तो मजा ही मजा। चलिए इस एक्साइटिंग अपडेट के बाद सुनते हैं हमारा आज का अगला गाना।

दोस्तों, YRF स्पाई यूनिवर्स से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आलिया भट्ट और सार्वरी वाघ की आने वाली मेगा एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा का टीजर कल यानी 10 जून 2026 को ऑफिशियली ड्रॉप होने वाला है। मेकर्स ने साफ कह दिया है कि अल्फा सिर्फ एक फिल्म का टाइटल नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। पिछले साल ऋतिक और जूनियर NTR की वॉर्ड 2 बॉक्स ऑफिस पर उतना बड़ा कमाल नहीं कर पाई थी, इसीलिए इस बार YRF ने पूरी जान इस फिल्म लेट स्पाई यूनिवर्स पर लगा दी है। फिल्म में बॉबी देओल में मेन विलन के रूप में देखेंगे और उनका सामना करेंगी हमारी दो बैड एश फीमेल स्पाइस। कल टीजर आते ही हमारे शो पर सबसे पहला इसका रिव्यू मिलेगा। तब तक के लिए सुनते हैं एक और सुपरहिट गाना, स्टे ट्यून्ड।

दोस्तों, इस वक्त नेटफ्लिक्स पर पुलकित सम्राट और देवयेंदु की सीरीज ग्लोरी काफी ट्रेंड कर रही है। ये एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया पर आधारित क्राइम थ्रिलर है। कहानी एक बॉक्सर की मौत के घूमते शुरू होती है। अगर आपको रॉ एक्शन और इंटरनल करप्शन देखना पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए एक बार देखने लायक जरूर है। वहीं दूसरी तरफ सोनी लिव पर अनदेखी द फाइनल बैटल सीजन 4 आ चुका है, जहां अटवाल फैमिली का खानदानी झगड़ा अब एक सर्वाइवल गेम बन चुका है। रिंगू सिंह का बदला हुआ रूप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन शानदार ओटीटी रिकमेंडेशन के साथ चलिए सुनते हैं हमारा आज का दूसरा गाना। गरम चाय के साथ इस ट्रैक का मजा लीजिएगा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till the stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों छोटी छोटी फिल्म खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बॉलीवुड की हॉटी अनन्या पांडे इन दिनों थोड़े बैकलैश का सामना कर रही है। उनकी आने वाली फिल्म चांद मेरा दिल के लिए उन्होंने जो भरतनाट्यम डांस किया उसे लेकर इंटरनेट पर लोग उन्हें थोड़ा ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अनन्या ने साफ कह दिया है कि लाइफ इज ब्यूटिफुल एंड वो इन सब ट्रोल्स पर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं दूसरी तरफ श्रेयास तलपड़े और काजल अग्रवाल की फिल्म द इंडियन स्टोरी का नया शेड्यूल शुरू हो चुका है जो आने वाली है 24 जुलाई को रिलीज होगी। चलिए गपशप का सिलसिला चलता रहेगा, अब सुनते हैं शो का आखिरी गाना।

दोस्तों, पिछले फ्राइडे रिलीज हुई फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह क्रैश हो गई है। वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ना ने पहले 3 दिनों में 23 करोड़ की कमाई की थी, पर मंडे को इसकी कमाई अचानक ठप पड़ गई। वही बॉबी देओल की फिल्म भंडार, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है, वो ऑडियंस ढूंढने के लिए तरस रही है। दूसरी तरफ साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म करप्पू ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का बवाल बिजनेस करके सबको हैरान कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि ये फिल्म आने वाली 12 जून को अमेज़न प्राइम वीडियो पर ओटीटी पर रिलीज हो रही है, तो अगर आपने इसे मिस किया है तो तैयार हो जाइए।

शो के एंड पर आते आते बात करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जिनका इंतजार पूरे देश को है। रणवीर कपूर और सई पल्लवी की रामायणा पार्ट वन की शूटिंग बहुत ही सीक्रेट तरीके से चल रही है और ये फिल्म 8 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। काजल अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये एक ऐसी फिल्म होगी जो इंडिया ने आज तक कभी नहीं देखी। वही कार्तिक आर्यन की नागजीला नागलोक का पहला कांड को लेकर भी हाइप बना शुरू हो चुका है। बॉलीवुड अब सच में ग्लोबल होने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चुका है हमारे आज के आखिरी गीत का। इस सुपरहिट ट्रैक को एंजॉय कीजिए। मैं लौट कर आती हूँ शो के फाइनल क्लोजर पर।

0: दोस्तों, आज के फिल्मी गपशप में हमने रणवीर सिंह के लीगल नोटिस से लेकर आलिया भट्ट की एक्शन फिल्म अल्फा जून के 1400 करोड़ के बॉक्स ऑफिस दंगा और सूर्य की मेगा ओटीटी रिलीज तक की सारी अपडेट्स बिल्कुल लाइव और ताजा आप तक पहुंचाई है। यह आकाशवाणी चैनल करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलू और वीपी शिवा कोलुंदू तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi today said that the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on this path of service, good governance and prosperity. Prime Minister Narendra Modi has said that through continuous efforts inspired by the ethos of Sabka Saath Sabka Vikas over the past 12 years, the country is moving towards becoming a strong and self-reliant India. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said that dedication and service spirit have been the government's invaluable capital for nation building. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, today in New Delhi. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Union Home Minister paid tributes to Lord Birsa Munda on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said, Lord Birsa Munda sounded the conch of freedom against British rule through the Ul Gulan movement, calling him the immortal symbol of tribal pride, patriotism and cultural consciousness. The Home Minister noted that Birsa Munda organized tribal society to protect their rights and heritage and gave the conservation of water, forest and land the form of a people's movement. Ministry of Coal has notified the

0: दोस्तों, अभी अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हमारा नेशनल न्यूज बुलेटिन। देश के ताजा हालचाल के बाद अब वक्त हो चुका है हमारे मॉर्निंग ट्रांसमिशन के सबसे आखिरी, सबसे प्यारे और आप सभी के मनपसंद प्रोग्राम, जी हाँ, शुरू हो चुका है रेडियो ऑन डिमांड अरुण एफएम पर ट्यून। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को आपके इस आरजे याजू का आपसे दिल से प्यार भरा नमस्कार और एक बेहद हसीन और यादगार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड एक ऐसा आशियाना है जहां चाबी आपके हाथ में होती है। हम फरमाइश करते हैं और आप फरमाइश करते हैं, आप चिट्ठी भेजते हैं, हमें मैसेज करते हैं और हम आपके पसंदीदा गीत लेकर हाजिर हो जाते हैं। संगीत का कोई धर्म नहीं होता, कोई सरहद नहीं होती, ये तो बस दिलों को जोड़ना जानता है। आज भी हमारे पास अलग अलग जगहों से हमारे दोस्तों की बहुत ही खूबसूरत फरमाइशें आई हैं, जिन्हें सुनकर आपके दिल सच में खुश हो जाएंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब आपकी पसंद हमारी आवाज बनने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं ख्वाहिशों का ये हसीन सिलसिला हमारी आज की पहली फरमाइश के साथ।

चलिए दोस्तों सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधे लखंगसम कार्बी आंगलोंग से। वहां से हमारे बड़े ही प्यारे श्रोता सरचिंगरी तेरोन जी, अक्लर तेरोन जी और सरलोए क्रोजी ने एक बहुत ही हसीन गीत की फरमाइश भेजी है। इनका कहना है कि ये गाना है इनके दिलों के बेहद करीब है और गाना पता है कौन से है, 90s का वो बेहद आइकॉनिक और रोमांटिक ट्रैक मेरी दुनिया में आना न जाना सनम। क्या चॉइस है आप तीनों की। सच में कार्बी आंगलोंग के हमारे इन दोस्तों ने सुबह सुबह इस गाने की फरमाइश करके पूरे अरुणाचल के लिसनर्स का मूड एकदम रोमांटिक और खुशनुमा बना दिया है। जब ये गाना बजता है तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थमसा गया हो। आप तीनों को और आपके पूरे परिवार को अरुण एफएम की तरफ से देर सारी दुआएं। चलिए आपकी फरमाइश पर पेश है आपका ये फेवरेट ट्रैक और एंजॉय कीजिएगा।

क्या खूबसूरत गीत था ये दोस्तों, मेरी दुनिया में आना न जाना सनम। कुछ गाने सच में ऐसे होते हैं दोस्तों जो कभी पुराने नहीं होते। हर बार जब इनके लफ्ज कानों में पड़ते हैं तो दिल एक अलग ही सुकून के समुन्द्र में डूब जाता है। सर चिंगरी जी, अलकर जी और सरलू जी, आपको आपके इस सुपरहिट फरमाइश ने आज की सुबह को सच में हसीन बना दिया है। थैंक यू सो मच हमारी रेडियो फैमिली से जुड़ने के लिए। चलिए संगीत का ये हसीन कारवा अब लंकंगसम से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे हिगी बागरा की तरफ। और हिगी बागरा से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और बेहद रेगुलर और प्यारे लिसनर जुमकर बागरा जी, और उनके साथ है उनकी बेटर हाफ, उनकी धर्मपत्नी गुमे मई बागरा जी।

दोस्तों इन दोनों प्यारे पति पत्नी ने एक बहुत ही सॉल्टफुल और खूबसूरत गीत चुना है आवाज हमारी इसी वादी में। पता है दोस्तों, जब हम एक परिवार और एक प्यारा सा कपल रेडियो पर साथ में गाना सुनता है ना और फरमाइश बेचता है, तो उस संगीत की मिठास दुगनी हो जाती है। झुमकर जी और कुमे जी, आप दोनों को का ये साथ और ये प्यार यूं ही हमेशा सदाबहार बना रहे, यही हमारी पूरी अरुण FM टीम की ख्वाहिश है। आपकी पसंद का ये गाना हमारे बाकी लिसनर्स के दिलों को भी जरूर छुएंगे। तो चलिए, हिगी बागरा के इस प्यारे से कपल की फरमाइश पर पेश है ये बेहद खूबसूरत नगमा। सुनिए और खो जाइए इस वादी की आवाज में।

आवाज तो हमारी इसी वादी में ही रहेगी। कितना गहरा और कितना प्यारा संदेश है इस गाने में। झुमकर भागरा जी और कुमे मई भागरा जी, आप दोनों की इस फरमाइश ने हमारे अरुणाचल की नसीन वादियों में सच में एक जादू सा घोल दिया है। इतना प्यारा गाना चुनने के लिए आप दोनों को दिल से शुक्रिया। दोस्तों, फरमाइश का ये सिलसिला अभी रुका नहीं है, अभी तो हमारे पास और भी मैसेजेस बाकी हैं।

सिलसिला आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ख्वाहिशों का ये हसीन दंगा अब लौट कर जा रहा है एक बार फिर लंकागम आसाम कार्बी आंगलोंग की तरफ। वहां से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे तीन बेहद अजीज लिसनर्स, टेंसन क्रोजी, सर्टलो एक क्रोजी और रोजमेरी तेरों पीछे। आप तीनों ने मिलकर जो गाना चुना है ना दोस्तों, उसे सुनकर दिल सच में झूमता है। फिल्म सिंदूर से लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज का गाया हुआ वो सवाई से प्यार एवरग्रीन ट्रैक पतझर सावन बसंत बहार एक बरस का मौसम चार। पता है दोस्तों, आप तीनों ने इस गाने को चुनकर हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच याद दिला दिया है। मौसम चाहे पतझर का हो, सावन का हो या बसंत का हो, हर मौसम का अपना एक मजा है, अपनी एक खूबसूरती है। बिल्कुल हमारे दोस्ती और रिश्तों की तरह, जो हर मौसम में यूं ही पक्के बने रहते हैं। टेंशन जी, कार्लो जी, सरलो जी और रोजमेरी जी, आप तीनों की ये दोस्ती और ये प्यारे प्यार हमेशा ऐसे ही खिला रहे। पेश है आप तीनों की ये प्यारी फरमाइश, आप सभी के लिए ये लाजवाब गीत।

पांचवा मौसम प्यार का। सच में अगर जिंदगी में प्यार और अपनों का साथ हो तो हर मौसम बसंत बन जाता है। टेंशन जी, सार्लो जी और रोज मेरी जी, आप

क्या गहरी बात कही गई है रफी साहब और लता दीदी इस गाने में। रोमेश, रूनू और लकी जी गोलाघाट से हमारी रेडियो फैमिली से जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी डेडिकेशन भेजने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।

हेलम से हम से जुड़े हैं हमारे सबसे प्यारे कंप्यूटर डेली लिसनर ज्योति सूरी। ज्योति, सबसे पहले तो आपका दिल से शुक्रिया कि आप हर दिन अरुण एफएम पर हमारे शोज को इतने प्यार से सुनते हैं। और दोस्तों, हमारे इस डेली लिसनर ने आज जो गाना चुना है वो हर उस दिल की आवाज़ है जो सच्ची मोहब्बत पर यकीन रखता है। फिल्म जहर से श्रेया घोषाल की आवाज में गाया हुआ ये गीत अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, क्या लाजवाब और धांसू चॉइस है। बताइए दोस्तों, इस गाने की एक एक लाइन में जो डेडिकेशन है, जो शिद्दत है, वो सीधे दिल के पार उतर जाती है। जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और वो इंसान एक तरफ हो जाता है। ज्योति ने सुबह सुबह इस गाने की फरमाइश करके हमारे पूरे अरुणाचल और आसाम के लिसनर्स के दिल में

तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। सच में श्रेया घोषाल की मीठी आवाज ने इस मौसम को और भी यादगार बना दिया है। ज्योति हेलम असम से हमसे रोज जुड़ने के लिए और आज हमारी इस सुबह को इतना हसीन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, अब स्टूडियो की घड़ी पर जब मेरी नजर जा रही है तो दिल थोड़ा उदास हो रहा है। मेरी शिफ्ट की समय सीमा अब यहीं पर खत्म हो रहा है। हमारे पास इस वक्त मैसेज की बहुत सारी लिस्ट है और उनकी फरमाइश अभी भी पेंडिंग है, जिन्हें मैं इस शिफ्ट में समय की कमी के कारण प्ले नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफी चाहती हूं। प्लीज कोई भी मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी उदास या नाराज मत होइए। पता है क्यों? क्योंकि कल सुबह भी इस सीट पर, इस माइक के पीछे आपकी ये दोस्त आरजे याजू आपकी ड्यूटी पर तैनात रहने वाली है। जी हाँ, कल मेरी ही ड्यूटी है, इसीलिए मैं आपसे ये पक्का वादा करके जा रही हूँ कि आज जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट बची है उन सभी मैसेजेस को मैं कल सुबह सबसे पहले लाइन अप करूंगी और आपके पसंदीदा गाने जरूर बजाऊंगी। तो आपकी फरमाइश कहीं नहीं जा रही है, वो मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित है।

जाते जाते बस यही कहूंगी दोस्तों कि थोड़ा सा इंतजार उस प्यार और संगीत को और भी मीठा बना देता है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए जोश, ढेर सारी बची हुई फरमाइशों और एवरग्रीन गीतों के साथ। अपने चेहरे की मुस्कान को बरकरार

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारे ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक दी तांगजांग और तकनीकी अभियंता पीवी त्योरी। दोस्तों, कहीं मत जाइएगा क्योंकि मनोरंजन का ये सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ ही यूं ही जारी रहेगा। अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे सुम्पी के साथ तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। थी आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई

सुबह उठते ही चेहरे पर मुस्कान रहे, हर एक दुख से आप कोसों दूर रहे, महक उठे आपकी जिंदगी, ऐसा शुभ दिन आपका आज रहे। प्यारे श्रोताओं, आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी आप सभी का स्वागत करती है आकाशवाणी ईटानगर की अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप इस वक्त हमें सुन रहे हैं हमारे दूसरे ट्रांसमिशन में, और इस सभा के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक एल ताली और तकनीकी अभियंता ए के सक्सेना। तो श्रोता, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे इस ट्रांसमिशन के पहले कार्यक्रम से, यानी कि फिल्मी लहर से, और देर न करते हुए जल्द ही आपको सुनवा देते हैं ये रॉकिंग सॉन्ग।

श्रोता, बरसात का मौसम है और बड़े ही जोरों शोरों से बारिश हम पर अपनी प्यार बरसा रहा है, तो ऐसे मौसम में एक बारिश वाला गाना तो बनता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर और अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, यानी कि पाश्चात्य गीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडी। सबसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart water management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan.
2: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. India stands steadfast in rejecting terrorism in all its forms and manifestations.
1: Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Ambassador Parvathaneni Harish, said Islamabad was merely attempting to deflect blame onto New Delhi. New Delhi condemned Islamabad's cross-border military operations, holding Pakistan accountable for significant civilian casualties resulting from its aerial assaults in Afghanistan.
2: Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing, and targeted killings. We support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. Such unconscionable acts of violence are a blatant assault on Afghanistan's sovereignty and a threat to the region's peace and stability. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty.
1: In the Philippines, the death toll has climbed to 37 after the 7.8 magnitude offshore earthquake that hit the southern part of the country yesterday. More than 500 people were injured while 4 people were missing. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has said agencies were coordinating the disaster response. Benchmark domestic equity indices were trading moderately up in the forenoon session today. The Sensex gained 144 points to reach 73,668, while the Nifty advanced 60 points to 23,183 when reports last came in. In men's cricket, India A were 129 for 3 in 28.3 overs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. Earlier, India A won the toss and opted to bat first. And with that, we end this news bulletin.
3: श्रोताओ आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुण एफएम जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

अदा ए गजल में है कोई जादू सा छुपा, जो दिल के तारों को छू ले वो असर है इसमें। लफ्जों की नजाकत और जज्बों की रवानी, मुकम्मल होती है हर महफिल इसकी कहानी।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आप इंटरव्यू सुनेंगे श्री सांगे श्रिंग से, और इस इंटरव्यू को कंडक्ट कर रहे हैं गोपाल राय।
1: ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ज़ है। प्रस्तुत है वीकली इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हमारे मेहमान है अवार्ड विनिंग यंग एंड डायनामिक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम बोमदिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, श्री सांगे सिरिंग। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: अरुणाचल प्रदेश की ही नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वेल नोन एंटरप्रेन्योर है, जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसी हुई।
2: वेल, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में, मैंने जो मेरा कंपनी हॉलीडे स्काउट 2011 में शुरू किया था, जब मैं सेकंड ईयर में था दिल्ली में। हॉलीडे स्काउट इज अ टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इट्स अ ट्रेवल कंपनी। लेकिन मैंने टूरिज्म, जब मैं क्लास 10 में था, तभी मैंने समझ लिया था कि टूरिज्म ही मेरे को करना है, क्योंकि मेरा जो अंकल है, आई मीन हिस्से में छिंग होंगे, उनका भी ट्रेवल कंपनी का नाम है हिमालयन हॉलीडेज। तो क्या होता था कि लाइक बैक व्हेन आई वाज 15 इयर्स ओल्ड, तब हमारे घर में काफी सारा जो यूरोपियन हो गया या फिर अमेरिकन गेस्ट है ना, वो हमारे घर में आते थे टू हैव आई मीन डिनर लंच एंड ऑल। तभी मतलब उनको देख के दिल में एक ख्वाहिश हुआ कि ये जो कर रहे मेरे को भी यही करना है। तो उसी के चलते फिर मैंने आस्ते आस्ते मेरे अंकल को बोला कि मुझे भी सिखाओ कि आप क्या कर रहे हो। तो क्लास 10 का जो वेकेशन है, वहीं से मेरा जो ये टूरिज्म का जो सिलसिला है ये वो शुरू हुआ था। और फिर आस्ते आस्ते जब दिल्ली गया, तो सभी को पता है कि दिल्ली में आई मीन लाइफ इज क्वाइट इन पेस। तो उसी टाइम में मुझे कुछ करना था और मेरे को सिर्फ टूरिज्म ही आता था। तो 2011 में मैंने अपना ये हॉलीडे स्काउट जो कंपनी है ये फेसबुक में एक पेज बनाया स्टार्टिंग इनिशियली, और वहीं से शुरुआत हुआ। तो क्या था कि 2011 में एंटायर नॉर्थ से कोई किसी का भी मतलब आपका फेसबुक में अपीयरेंस नहीं था, मतलब वो प्रेजेंट नहीं था, उनका पेज हो गया या फिर जो भी हो गया, आजकल तो काफी सारे हैं। तो हमारा जो कंपनी था वो इनिशियली मतलब फर्स्ट ऐसा कंपनी होगा जो फेसबुक में आया। तो आस्ते मतलब लोगों ने देखा, फिर वहीं से ही लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और वहीं से ही हमारा जो ये टेक ऑफ शुरू हो गया था।
1: अब बात करते हैं, आपकी बचपन कहाँ बीती और कैसी रही?
2: मैंने क्लास 3, वैसे तो मैं बोमडिला का हूँ, क्लास 3 तक मैं बोमडिला में था। उसके बाद में फिर क्लास 4 से लेके 8 तक मैं दिराम में हॉस्टल में था, सेंट लोपन इंग्लिश स्कूल पे। उसके बाद फिर मैं 9, 10, 11 बोमडिला में था, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल पे। फिर क्लास 12 जो है मैंने तेजू में किया, लोहित डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद फिर वहां से फॉर हायर एजुकेशन मैं दिल्ली गया, DU में अपना ग्रेजुएशन किया। फिर वहीं से ही ये टूरिज्म जो PG है वो मैंने YMCA से किया।
1: हम बात करेंगे फिर से हॉलीडे स्काउट की, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है?
2: हॉलीडे स्काउट जो है ये हमारा ये ट्रेवल कंपनी है। हम लोग ज्यादातर जो टूर पैकेजेस हैं, टूर पैकेजेस में ही डील करते हैं। अभी जैसे इनबाउंड हो गया, इनबाउंड का मतलब होता है जैसे बाहर देश जो लोग आते हैं इंडिया में उनको घुमाना। तो लेकिन हमारा जो USP है, जो हम स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट पे ही करते हैं, ओनली इन 7 सिस्टर्स में, ऐसे किम भी नहीं करता, ओनली इन 7 सिस्टर प्लस हम लद्दाख करते हैं। लद्दाख क्यों? क्योंकि जून जुलाई अगस्त में हमारा यहाँ पे ऑफ सीजन होता है यू टू रेंट, और लद्दाख में तभी मतलब सीजन होता है जून जुलाई अगस्त के महीने पे। तो इसलिए मतलब और डोमेस्टिक पे जो जैसे कि आप मान लीजिए गुजरात हो या मुंबई दिल्ली, तो वैसे को हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लद्दाख में हम कैटर करते हैं जी टूर पैकेजेस देखिए।
1: जानना चाहेंगे जब सबसे पहले जब आपको क्लाइंट मिला था कौन थे, याद है कुछ?
2: हाँ जी, फर्स्ट गेस्ट तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, इट वॉज 48 डेज टूर, वो जो था लंबा था तवांग सर्किट, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट गेस्ट था। और मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने जो है हॉलीडे स्काउट एक फेसबुक पेज से शुरू किया था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक भूटान का एक कंपनी है, उन्होंने मेरा पोस्ट देखा और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि 3 कोरियन मंग्स हैं, एक मंक और 2 नन, एंड उनको जो है ये बुद्धिस्ट सर्किट करना है, स्पेशली तवांग बेल्ट जो हमारा बोमडिला दिरांग तवांग है, और प्लस में से फिर ये उनको ये लुम्बिनी जो गोल्डन जो ये बुद्धिस्ट सर्किट बोलते हैं हमारा जो इंडिया का बोध गया हो गया लुम्बिनी सारनाथ ना, वो सब करना था। और उसके बाद में फिर उनको करना था ये लद्दाख ट्रिप। तो 3 जो कोरियन मॉन्क के नंस थे वो मेरा फर्स्ट गेस्ट था
1: जी। तो इस फील्ड में आप एकदम नए नए थे, तो कुछ चैलेंजेस थे, कुछ परेशानियां हुई?
2: वेल, अगर आप मुझे चैलेंजेस के बारे में पूछते हैं, तो फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो 15 साल से ही टूरिज्म में था, वैसे क्लास 10 के वेकेशन से था। और जब मुझे अपना जब फर्स्ट गेस्ट मिला, तो वो एज ए हॉलीडे स्काउट के लिए वो फर्स्ट गेस्ट था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो गाइडिंग का वो तो मेरे पास में पहले से ही था। तो उसमें मुझे मतलब एक्साइटमेंट था कि हॉलीडे स्काउट का फर्स्ट गेस्ट है, पर नर्वसनेस नहीं था उसमें।
1: जी, हॉलीडे स्काउट की जब बात करते हैं तो सांगे सिरिंग और हॉलीडे स्काउट के साथ साथ ये भी बहुत पॉपुलर बात है कि आपने स्कूल को पेंट करवाया था, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
2: हाँ जी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ हॉलीडे स्काउट ना, हमारा क्योंकि मैंने ये जो टूरिज्म जो है ग्रास रूट से ही मतलब मैंने देखा है। और क्या था कि स्कूल पेन को लेके अगर स्पेसिफिकली इसी टॉपिक में बात किया जाए, तो मैं जो हूँ, मेरे जो दो गेस्ट हैं कैनेडियन लेडीज थे, मून एंड टीना, मैं उनका नाम अभी भी जानता हूँ क्योंकि दे वर लाइक वेरी इंपैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ आई मीन जब हम घूमे थे स्कूल में ना, तो हम विलेज वॉक कर रहे थे एंड देन उनमें से एक जो था वो जो है कनाडा में टीचर थी, तो उन्होंने कहा कि चलो स्कूल जाके देखते हैं। तो जस्ट हम विलेज वॉक करते करते छुक में ही मतलब एक विलेज का नाम आई मीन ऑलमोस्ट मैक्सिमम 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दे रहा हूँ, तो वहां पे स्कूल में गए तो स्कूल का जो मतलब जो कंडीशन था वो एकदम खराब था।
1: जी
2: और तभी मैंने वहां पे जो हेडमास्टर है, बिकॉज इट्स ए मिडिल स्कूल, तो मैंने उनको बोला कि आपके स्कूल का जो भी है कंडीशन उसको मतलब एज अ हॉलीडे स्काउट विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हम स्कूल को रेनोवेट करेंगे। तो उसके बाद में फिर आई मीन और जो मेरा जो गेस्ट था उन्होंने भी कहा कि वी वुड ऑल्सो लाइक टू हेल्प आई मीन हॉलीडे स्काउट इन ये जो स्कूल को ना बनाने में। तो उसके बाद में वो तो चले गए, और जब हमारा जब जून जुलाई का सीजन था तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, तो लकीली आई मीन माई फ्रेंड्स वर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, 10-12 लोग आए, 8-9 दिन पूरा लगातार वहां पे स्कूल पे बैठे, स्कूल में पूरा पेंट किया, जो स्कूल का जो सीलिंग है वो ठीक कराया बच्चों के बीच में, क्योंकि जब हम रेनोवेशन कर रहे थे तो बच्चों के बीच में मतलब जो उनका जो पढ़ाई का जो सेशन था वो भी थोड़ा सा बिगड़ रहा था, तो हमने उनको भी मतलब टूरिज्म के बारे में सिखाया, पेंटिंग कॉम्पिटिशन रखा, जीके कॉम्पिटिशन रखा, स्पोर्ट्स का सेशन, मतलब उनको भी अच्छा एक स्पोर्ट्स वीक का तरफ में लेके गए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो सारा का सारा जो स्कूल है, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैंने 100% ऑफ स्कूल को ठीक कराया, लेकिन 85% स्कूल जो था वॉल से लेके आपका सीलिंग से पेंट विंडोज वो सब कुछ हमने ठीक कराया वहां पे।
1: जब ये काम कंप्लीट हो चुका है एग्जीक्यूट होने के बाद, ये जानना चाहेंगे जो बच्चों में पर्टिकुलरली बच्चों में उनके जो एक्सप्रेशन थे बहुत खुश होंगे, किस तरह के थे?
2: हाँ जी, आई मीन देखिए पहला जो था स्कूल का हालात वो था टूटा फूटा सा। उसके बाद में जब हमने जब ठीक कराया तो फिर हमने वॉल में आपका मिक्की माउस से लेके गुफी से लेके जो भी जो कार्टून होता है उन सब का मैंने पेंटिंग कराया। तो फिर क्या हुआ कि ये जो इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी टू द टॉक ना, मैं ये बोलना चाहूंगा कि उसके बाद भी मैं गया आई मीन गेस्ट लोगों को लेके, और तो वहां का टीचर जो है उन्होंने मुझे बोला कि आजकल जो है बच्चे, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अभी 15 बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोल रहे कि स्कूल अभी इतना मतलब कलरफुल हो गया कि बच्चे खुद मतलब नहीं ये बोल रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना है। पहले था कि कंडीशन ऑपोजिट था कि मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन अब स्कूल मतलब बन चुका है, कलरफुल है, और हमने मतलब वहाँ पे ये बुक्स से लेकर सब बहुत कुछ वहाँ पे डोनेट किया इन टर्म्स ऑफ लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट, बैडमिंटन ना, तो वो सबको भी मतलब लेके विद इन द विलेज एक अच्छा अवेयरनेस फैल चुका था कि उनको भी स्कूल जाना ही है बोल के।
1: सांगे एक टूर ऑपरेटर तो है, बहुत प्रसिद्ध टूर ऑपरेटर, साथ ही साथ एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर और खुद एक ट्रेवलर भी है।
2: वेल आई मीन आई थिंक दिस एड ऑन टू द मेरा जो हॉबी है, क्योंकि हम इतना जगह ट्रैवल करते हैं, और मेरा फोटोग्राफी में आई यूजली क्लिक विद माई फोन ओनली, क्योंकि इनिशियली जो हमारा जो यूएसपी है विद इन ऑल द टूर्स, वैसे तो हम काफी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टूर्स करते हैं, लेकिन फोटोग्राफी टूर जो है स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, उसमें आई मीन वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमारा टाइप ये मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, टोटनहैम जो जो जगह है, छोटे छोटे जगह वहां का जो ये आई मीन फोटोग्राफी क्लब्स है उनके साथ में टाइप है, तो कभी 2, 4, 6 लोग मतलब आ जाते हैं, इटली से भी काफी लोग आते हैं फोटोग्राफर्स। और आपको तो पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट में इन टर्म्स ऑफ ट्राइब एंड कल्चर और जो अटायर है, और हमारा यूएसपी एंटायर नॉर्थ ईस्ट में जैसे आप पता नहीं ट्राइब का जो लेडीज है वो आपको मतलब पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सो इट इट अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ फोटोग्राफर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए मैंने भी उनके साथ में जा जाके मतलब एक दो इधर उधर कर मतलब फोटोग्राफी का टेक्निक एंड ट्रिक्स वो सीख के मैं ही वही वही करता हूँ।
1: जी, एज अ टूर ऑपरेटर जिस तरह से आपने नॉर्थ ईस्ट को हमने मैग्निफाई किया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को किया, इसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले। आपके जुबान से जानना चाहेंगे कि एक दो अवार्ड जो आपके लिए बहुत मायने रखता हो।
2: जी आई मीन थैंक गॉड टच वुड की अभी तक जो भी किया मैंने उसका मतलब काफी मुझे अप्रिसिएशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आप इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से। तो 2017 में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है हमारा और अरुणाचल का, उन्होंने मुझे बस अवार्ड दिया था बाय द नेम एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर 2017 को था वो। उसके बाद मुझे फिर ये जो अमेरिका का जो मैगजीन है काउंटेनस ट्रेवलर मैगजीन, ये जो है मतलब अमेरिका में और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों में में मतलब काफी फेमस है, उन्होंने मुझे 50 पीपल टू नो इन द हिमालय में नाम दिया था, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज आई मीन कमिंग फ्रॉम सच अ हम्बल बैकग्राउंड एंड देन ये जो नाम था, आई मीन 50 पीपल टू नो इन द हिमालय, इट वॉज क्वाइट ह्यूज फॉर मी। और साथ ही साथ मुझे फिर ये जो केयर हिमालय एक एसोसिएशन है, इनका जो ऑफिस है वैसे तो ये हिमाचल में है लेकिन ये पूरा हिमालयन बेल्ट में ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते हैं। तो 2019 में मुझे थिम्पू में बुलाया था भूटान में, और वहां में मुझे ये जो भूटान का जो होम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी अवार्ड दिया था, केयर हिमालय का अवार्ड, क्योंकि अंडर हॉलीडेज का हम काफी सारे इनिशिएटिव करते हैं रिस्पॉन्सिबल को लेकर, जैसे आपने कहा कि स्कूल को हमने ठीक कराया, तो साथ ही साथ ऐसा मतलब काफी सारा लिस्ट है जो मतलब हम एज अ स्मॉल कंपनी हम चाहते हैं कि हमारे साथ में जो हमारा जो सोसाइटी है वो भी ग्रो करे। और फिर उसके बाद में इन टर्म्स ऑफ अवार्ड हमने फिर ये

0: रिसेंटली जो ईस्ट मोजो जो है, जो गुवाहाटी बेस्ड मीडिया फर्म है, उन्होंने भी ये उनके तरफ से प्लस ये यंग नॉर्थ ईस्ट हीरो का जो अवार्ड है टूरिज्म सेगमेंट में, वो अवार्ड मुझे मिला था फर्स्ट एडिशन का। और उसके बाद में फिर मुझे ये आइकन ऑफ द एशिया का भी अवार्ड मिला है, आई मीन यूथ में। फिर अभी तो आई मीन मैं भी भूल गया हूँ ना, अभी एक दो और है पर मुझे याद नहीं आ रहा है, आई एम रियली
1: जी
0: सॉरी।
1: लिस्ट तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: जैसे आप एक युवा हैं, आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, आपको आप वेल रिकग्नाइज्ड है, लेकिन दुख की बात है कि अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कुछ युवा हैं जो आज नशे की लत से ग्रसित हैं, तो उन्हें इस लत से किस तरह से बाहर निकाला जाए? आप सोचते हैं कि क्या किया जाए ताकि इस लत से दूर रहे?
0: वेल इन टर्म्स ऑफ अभी देखा जाए तो जैसे अभी ड्रग्स हो गया ना, ड्रग्स का जो प्रॉब्लम है ये तो एंटायर आपका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ हर जगह है, नॉट ओनली अरुणाचल लेकिन एंटायर नॉर्थ ईस्ट पे। तो अभी ड्रग्स को लेके क्या है कि अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मतलब जिनको 100% लग चुका है, लेकिन जो यूथ है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे अवेयरनेस दिलाया जाए, तो इसमें मतलब पेरेंट्स का काफी बड़ा रोल होगा। क्योंकि आई मीन अभी हमारा जो ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ऑल दो यहाँ पे मतलब 26 मेजर ट्राइब्स है, और आप मान लीजिए जैसे कि वेस्ट में अभी बुद्धिस्ट हो गया या फिर हिंदू हो गया या फिर क्रिश्चियन हो गया, तो हमें मतलब मुझे लगता है आई मीन काफी सालों को ये चीज नहीं भी लग सकता है, मुझे ये चीज लगता है कि अगर हम अपने रिलीजियसली अगर कनेक्ट हो, प्लस अगर हमारा एम और पेशन जो है वो प्रॉपरली अगर आई मीन यू नो देखा जाए तो आई मीन थ्रू आवर पेरेंट्स, इसको अगर प्रॉपरली नर्चर किया जाए तो मतलब हम मतलब हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको मतलब ये ड्रग्स से हम दूर रख सकते हैं। ये मतलब
1: जी
0: ये मेरा सोच है कि रिलीजन जो है मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग एक रोल प्ले करेगा, और प्लस पेरेंट्स बींग पेरेंट्स विल ऑलवेज लुक आफ्टर देयर किड्स।
1: जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, आप वेल रिकग्नाइज है, और इसी तरह आपकी तरह अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हैं। कुछ कंपटीशन होती है कि मुझे बेस्ट करना है, इससे बेहतर करना है, वो तो कुछ इस तरह के कुछ होते हैं?
0: कंपटीशन तो विद इन माई सेल्फ, तो वो तो आई मीन हर दिन होता है क्या कि मुझे और अच्छा करना है और अच्छा करना है। लेकिन अगर आप देखा जाए जैसे मास में ना, तो अरुणाचल में अगर मेरे जो फील्ड इसमें आप देखा जाए तो मतलब यूथ जो है इतना मतलब उभर के नहीं आ रहा। ऑल दो हाँ अभी जो है इन फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स आफ्टर कोरोना काफी सारे यूथ लोग आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है जो भी जो फाउंडर है या फिर जो भी प्रोवाइडर है या फिर जो भी पीपल आई मीन द पर्सन हु वांट्स टू बी इन दिस लाइन, उनको थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा। अभी मान लीजिए जैसे कि बात ये है कि जो मेरा जो सीनियर्स है तो वो लोग ही मुझे बोलते हैं कि फॉर देम जब वो लोग कर रहे थे तो उनका कॉम्पिटिटर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स जब तक मैं नहीं आया तो कोई था नहीं। तो सिमिलरली अभी मैं भी 2011 से हूँ आई मीन इस फील्ड पे, लेकिन मुझे भी नहीं लग रहा है कि मतलब मेरे कॉम्पिटिटर कोई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आई एम डूइंग द बेस्ट, लेकिन मुझे ये फील होता है अगर आप देखा जाए तो अलग जगह से तो जो मेरे एज है और या फिर जो मेरे से छोटे है वो काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन एंटायर अरुणाचल में ना हमारा जो जो मेन जो सोच है प्लस जो पेशेंस चाहिए ना वो जो काफी लेक हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मतलब ओवरनाइट तो नथिंग टर्न्स इनटू गोल्ड ना, आपको थोड़ा टाइम देना होगा और दिल से देना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे ए भी चाहिए बी भी चाहिए सी भी चाहिए ना, अगर आपको ए चाहिए तो आपको पूरा फोकस करके उसी में ही टिकना होगा पूरा।
1: टूरिज्म की बात करते हैं तो आपने इंटरनेशनल टूरिस्ट को हैंडल किया है, डोमेस्टिक टूरिस्ट को हैंडल किया है, क्लाइंट्स की बात करते हैं तो उनकी जो सर्विसेज जो डिमांड होते हैं किस तरह के होते हैं, क्या क्या फर्क होते हैं?
0: अभी जैसे कि मान लीजिए इनबाउंड और ये डोमेस्टिक का बात कर रहे हैं, तो अरुणाचल एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको ये पीएपी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट फॉर फॉरनर्स लगता है और आईएलपी लगता है फॉर द डोमेस्टिक गेस्ट। आईएलपी जो है मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि पीएपी है। अभी मान लीजिए जैसे मेरा फार्म का नाम है हॉलीडे स्काउट, अगर मैंने इधर उधर करके मतलब जो पीएपी है पीएपी में मैंने अगर थोड़ा भी माइनस प्लस कर दिया तो मेरा जो फार्म है वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है, लेकिन जो डोमेस्टिक के साथ में वो मतलब इतना मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ पीएपी। तो जब इसलिए जब भी हमारा जो इनबाउंड जो गेस्ट होता है जो फॉरनर्स होते हैं ना, तो उनको मतलब हम मतलब बच्चे की तरह देखते हैं
1: जी
0: उनको, उनको मतलब सुबह 5 बजे से लेके गाड़ी साफ होना चाहिए, मतलब नहीं जो प्रोफेशनलिज्म है उसको मतलब
1: जी
0: अच्छे से मेंटेन करते हुए एक गाइड हर टूर में देते हैं। अभी काफी सारा होता है टूर ऑपरेटर या फिर एजेंसी ऐसा भी है जो मतलब बिना गाइड का भेज देता है। अभी बिना गाइड का तो वो फिर देखेगा लेकिन समझेगा नहीं। और हमारा जो ये जो एरिया है अब यहाँ पे मानता हूँ कि तवांग हो गया मेचुका आनी नहीं, दिस आर लाइक वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन आपको जहाँ पे देख के आई मीन यू गेट टू नो आई मीन हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस इज। लेकिन जो अलग बेल्ट है जैसे मान लीजिए आपका जो जीरो हो गया आपका वाकरो हो गया ना, जो ट्राइबल एरिया है वहां पे तो आपको कोई समझाने के लिए चाहिए, जहां जब तक आप जगह के बारे में समझोगे नहीं और प्रॉपरली मतलब ना उनका जो अटायर है फूड हैबिट है ये सब मतलब अच्छे से समझोगे नहीं आप यू विल नॉट गेट द टोटल आइडिया ऑफ द एरिया ना। तो इसी बात में मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फॉरनर्स के साथ में हमारा पूरा गाइड होता है सब कुछ अच्छा से होता है, इसका ये मतलब नहीं कि डोमेस्टिक के साथ में हम मतलब लूज छोड़ देते हैं।
1: जी
0: उनके साथ में भी जो हमारा जो ड्राइवर्स होते हैं अभी हमारा जो हॉलीडे स्कॉट में जो ड्राइवर्स है दे आर ऑल वेरी प्रोफेशनल, और हमारा तो क्राइटेरिया यही कि उनका मतलब एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर्स सेव होना है ड्राइवर्स का भी, क्योंकि वो ड्राइवर कम गाइड का काम कर सकते हैं। और डोमेस्टिक को टू बी वेरी फ्रेंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डोमेस्टिक को टूर पैकेज चाहिए सस्ता में। मैं एकदम सस्ता वाला तो काम नहीं करता, लेकिन जितना में हो सके जो बेस्ट होगा उससे भी अच्छा और देने का हमेशा प्रयास करता हूँ।
1: तो जैसे अभी आप क्लाइंट से मिलते हैं, टूरिस्ट से मिलते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के लोगों से मिलते हैं, तो आपने क्या सीखा उन लोगों से मिलकर, टूरिस्ट से मिलकर, क्लाइंट से मिलकर?
0: वैसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है जिंदगी में ना, क्योंकि छोटा सा ही मैं तो टूरिस्ट के साथ ही घूम घूम के मतलब बड़ा हुआ हूँ, तो काफी चीज सीखा है मैंने। अभी स्पेसिफिकली अभी मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये चीज है, लेकिन एज ए ह्यूमन और मतलब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना, क्योंकि हमारे पास जब भी आते हैं जो हमारा जो गेस्ट है, ऑल दो टूरिज्म इज ऑल अबाउट हॉस्पिटैलिटी, काफी सारा गेस्ट हमारा मतलब आई मीन दे आर वेरी हाई एंड गेस्ट, वो इतना पे करके आते हैं, लेकिन बट देन आई मीन दे आर नेचर ऑफ लाइक यू नो टॉकिंग आई मीन रेस्पेक्टिंग नॉट ओनली मी बट देन द नेटिव ऑफ द प्लेस विलेज एंड ऑल, वो सब चीज इतना एक हम्बलनेस जो है वो सब इतना दिल को छू जाता है ना कि वो मतलब हमेशा फिर अभी दिल में रह चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो ये हमें रूट होना है ऑल ना, तो जो हॉस्पिटलिटी में ऑब्वियसली हम्बलनेस तो होना है, पर हम्बलनेस के ऊपर वो मतलब मल्टीप्लाई से मतलब नहीं कि हम मारतों से मार के चला जाता है कि हम और हम्बल हो, मैंने और हम्बल होना सीखा उनसे।
1: जी, तो हम्बलनेस की बात करते हैं तो आपको बहुत सारे मैगजीन्स में, न्यूज पेपर्स में आप पब्लिश हो चुके हैं, अपने बारे में पढ़ना कैसा लगता है?
0: ये तो हमेशा एक्साइटमेंट की बात है, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया इसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। ऑल तो ये मेरा फर्स्ट रेडियो टॉक है, लेकिन हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हम सीख रहे हैं, तो आपके पास बैठ के भी मैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड और मैं सीख रहा हूँ आपसे भी बहुत कुछ।
1: जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, सांगी सिरिंग सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है, बहुत खुश दिखता है, तो आप रियल में बहुत हमेशा खुश रहते हैं?
0: अरे अभी आई मीन रियल में हमेशा खुश तो अभी लाइफ में तो अप डाउन होता है हर किसी के बारे में, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा जो बिजनेस ही और मेरा जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा पैशन ही था, और मैंने फेसबुक से और जो सोशल मीडिया से शुरू किया था, तो अभी मैं घूमते रहता हूँ जहाँ था ऐसे लग गया इसके साथ यहाँ वहाँ, तो कुछ भी होता है इंटरेस्टिंग वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो लोग आई मीन जो लोग है जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स है या फिर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स है तो देखिए तो खुशी होते है। आई मीन मेरा तो मानना ये है कि मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ कि जो मुझे पसंद है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। फिर बात करते हैं आपके क्लाइंट्स की, अभी तक सबसे ज्यादा तकलीफ किस क्लाइंट को हैंडल करने में हुई है?
0: एक है कि काफी इंटरेस्टिंग ना कहानी, एक हमारे पास में एक कपल आया था, बोथ ऑफ देम दे वर रिटायर्ड पर्सन, इजरायली थे और वो एक कपल था, तो जो हमारा जो टूर था वो था 14 डेज का, ये जीरो उसके बाद में ये तवांग बेल्ट था ईटानगर का, तो मैं गेस्ट था उसमें, सॉरी मैं गाइड था उसमें, आई कांट बी द गेस्ट ना, आई वाज अ गाइड। ये 2015 का बात है, तो मैं उनको घुमा रहा था गुवाहाटी से, हमने पिकअप किया, हम गुवाहाटी से पिकअप करके बालपुंग की तरफ आ रहे थे। फर्स्ट दिन मैंने बहुत बात किया क्योंकि हमारा काम है जगह के बारे में समझाना है, तो फिर बोथ ऑफ देम दे वर लाइक ओके हाँ ठीक है, ओके हाँ ठीक है, तीन वर्ड यही था दिन भर। मैंने सोचा चलो कम बात करते हैं क्योंकि अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं ना, तो फिर उसके बाद में चलो डे वन था, ये डे टू मैंने दिखा हाँ ये भी ठीक है ओके हाँ यस ना, सेम तीन वर्ड था और फोटो खींचा, मतलब फोटो भी ऐसे मतलब आप मान लीजिए वाटरफॉल में गए एक फोटो खींचा, अभी वो कैसा है क्या नहीं है उनको भी नहीं पता, बस उन्होंने बोला चलो, मैंने भी चलो ठीक है। थर्ड डे में तो मैंने भी सोचा अभी इनको इंटरेस्ट ही नहीं था और क्या मैं भी क्या बोलूँ ना, तो मैंने भी कहा गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर, उन्होंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, उसके बाद में फॉर द रेस्ट 8 to 8 डेज ना वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में चला गया पूरा टूर, इट वाज अ साइलेंट ट्रिप।
1: तो हम ये भी बोल सकते हैं मेमोरेबल रहा।
0: हाँ वो हाँ आई मीन लोग आते हैं ना, आई मीन हर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग आते हैं
1: जी,
0: तो ये भी एक हमारा मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो जो मेरा जो ड्राइवर है वो हम अभी भी बात करते हैं कि ऐसा ट्रिप हमें कभी मिला ही नहीं, इट वाज अ क्वाइट आई मीन इट वाज अ साइलेंट टूर।
1: आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश का जो टूरिज्म का सिनेरियो होगा कैसा होगा?
0: काफी अच्छा होगा, पास जैसे था उससे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि अभी हमारा जो टूरिज्म में अभी जो सेक्रेटरी है सेक्रेटरी सर प्लस हमारा जो डायरेक्टर टूरिज्म है दामो सर, बोथ ऑफ देम प्लस जो उनका जो स्टाफ है जैसे हमारा डिप्यूटी मन्ना मेरा है, दे आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग इन टर्म्स ऑफ लाइक प्रोमोटिंग टूरिज्म विद इन द विलेजेस, आप मान लीजिए होम स्टे से लेके गाइड से लेके जो टूर ऑपरेटर्स हो गया सभी को काफी हेल्प करते हैं। और जैसे आपने पूछा कि प्रमोशन के बारे में ना, हमने जो है 2013 से ही जो ट्रेवल राइटर्स होते हैं ब्लॉगर्स होते हैं उनको लेके जगह जगह का प्रमोशन तो हमने भी किया है, और फ्यूचर में तो ऑब्वियसली जैसे मतलब जागरूकता बढ़ रहा है और अरुणाचल तो ऑब्वियसली हर किसी को पसंद है और हर किसी का एक ड्रीम डेस्टिनेशन है।
1: लेकिन सच्चाई ये भी कि जब हम अरुणाचल टूरिज्म की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग कुछ प्लेस को ही जानते हैं, टेक एन एग्जाम्पल तवांग बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका?
0: जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि दिस आर ऑल बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस, लोगों को जितना पता होगा और वो जितना मतलब सोशल मीडिया में देखेंगे लोग उतने ही आएंगे। अभी आपका तवांग जीरो हो गया ये तो आपका मतलब नोटिस में इट्स अ पाई, हर किसी को खाना है वो ना, डेजर्ट है वो. आई मीन वो तो अभी आप हो ना हो नॉर्थ ईस्ट में गए तो तवांग जीरो ये सब तो करना ही करना है. अरुणाचल में तो आई मीन दिस टू आर द मेन अट्रैक्शन ना. लेकिन अभी अपकमिंग जैसे आपका अनिनी मैचुका ऑलरेडी आपका टूरिज्म मैप में है. अनिनी जो है उनका जो प्रमोशन है

0: रास्ता भी काफी अच्छा हो चुका है पहले जैसे था। पहले आप रोइंग टू अनिनी हमें लगा था 14 आवर्स, अभी सुनने में आ रहा है कि 9 आवर्स। तो आने वाला दिन में ये जो कनेक्टिविटी है वो और अच्छा होगा तो ऑब्वियसली लोग आएंगे।
1: कनेक्टिविटी की बात की, आजकल एयर कनेक्टिविटी भी हो गई, तो इससे टूरिस्ट फ्लो किस तरह का होगा?
0: इट विल ऑलवेज एड ऑन ना, आई मीन एड ऑन एज इन लाइक एट द चार्म टू द प्लेस। जैसे अब जीरो में है, तेजू में अभी रिसेंटली एक और टर्मिनल बनाया ना, तो तेजू में बना मतलब वो ऑब्वियसली आपका जो ईस्टर्न बेल्ट पे जो आपका नाम चाहिए ये रोइंग तेजू और जो अनिनी है उसको और प्रमोट करेगा। अभी हमारा ये जो अभी जीरो म्यूजिक फेस्टिवल कुछ साल पहले हर किसी का मतलब मैक्सिमम ऑफ द पीपल उनका प्रॉब्लम था कि काफी दूर है। पहले जब ये हमारा जो नाहरलगुन का रेलवे स्टेशन वो नहीं था तो इतना घर से लोग आके फिर ना आई मीन 14 आवर्स या फिर 15 आवर्स किसी को इतना दूर होता था। पर अभी आप डिब्रूगढ़ से डायरेक्ट ये जो छोटा वाला जो उनका जो प्लेन है ATR या कुछ है फ्लाई का उससे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी ऑलवेज एड्स ऑन टू द चार्म प्लस इट इंक्रीजेस द टूरिज्म इन द पर्टिकुलर लोकेशन।
1: जी, तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का कितना इंपॉर्टेंस है?
0: रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि अभी हमारा जो अरुणाचल पे ILP और PAP है, तो चलो हमने इन अ वे हमारा जो स्टेट को काफी सारे लोगों को लगेगा कि ये चीज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें मास टूरिज्म चाहिए। काफी सारों को लगता है कि ये अच्छा भी है। तो अभी सोचने की बात है कि आपको क्या चाहिए ना, मास टूरिज्म चाहिए कि आपको मतलब जो जैसे चल रहा है वैसे चाहिए। तो बिजनेस में देखा जाए तो आपको मास टूरिज्म से ही आपका मतलब ग्रोथ होगा, लेकिन जब ग्रोथ होगा तो आई मीन साइमल्टेनियसली आपका जगह को भी मतलब पोल्यूशन तो होना ही है। जैसे आप मान लीजिए अभी हिमाचल हो गया, मंडी हो गया ना, शिमला एंड ऑल, वहाँ पे इतना सारा टूरिज्म है कि टूरिस्ट चाहते हैं कि वहाँ पे मतलब जो उनका जो आई मीन जो ग्रोथ होना चाहिए वो पूरा गंदगी में जा रहा है, प्लास्टिक हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स ना, लीक गंदे हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी तक जैसे मान लीजिए आपका ये GRK जो पासर में है वो काफी अच्छा कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस और फिर विद इन अवेयरनेस जो लोकल लोगों को करा रहे हैं फैला रहे हैं ये नॉट ओनली इन टूरिज्म बट इन सफाई के मामले में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में। तो हमारा जो ये जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी काफी लोग कर रहे हैं लेकिन यूथ लोगों को अभी इतना पता नहीं है। तो इसमें मतलब और अभी जैसे हमने मैंने आपको कहा कि जो हमारा जो ग्रुप है आप तो है वो उस पर और ज्वाइन करके अगर हमारे पास जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें आके बात बात करके मतलब नहीं इसको कैसे करके और नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेके जाए रिस्पॉन्सिबल में, तो उसमें मतलब वो सभी अच्छा होगा।
1: लास्ट ईयर 2022 तक तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग का जो टूरिस्ट सर्किट था वो नहीं खुला था, अब वो खुल गया, तो इससे ईस्टर्न अरुणाचल के जो टूरिज्म को किस तरह से बूस्ट मिलेगा?
0: इससे तो आपको आई मीन ईस्टर्न अरुणाचल पहले बंद था लेकिन जब बंद था फिर भी उस टाइम में जो हमारा जो फॉरेनर्स को लेके जो परमिट था अदर जो पार्ट में PAP लगता था और वहां पे जो है RAP लगता था, लेकिन अभी भी अभी लेकिन वहां पे PAP से ही हम जा सकते हैं। लेकिन अभी आपने जैसे कहा कि वहां पे टूरिज्म से कैसे उनको बूस्ट मिलेगा ना, तो तिराप चांगलांग में जो ट्राइब है और जो कल्चर है उनका वो काफी रिच है। ऑल दो हाँ मैं मानता हूँ कि आई मीन दे आर वेरी मच सिमिलर नागा पीपल इन ऑल, लेकिन नागालैंड में क्या है कि आई मीन टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड देन द ओरिजिनल जो है वहां पे जो रियलिटी है नागा पीपल दे हैव कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, तो उनका जो मेन जो ग्रास रूट जो है जो उनका जो जड़ है ना जो USP है वो मिसिंग है। वो एक दो जगह में ही आप देख सकते हो जैसे कि नॉर्थ नागालैंड में हो गया जो मॉन एरिया हो गया जहाँ पे हेट हंटर है, तो वो भी इनकमिंग ईयर्स वो भी नहीं रहेंगे बिकॉज ऑल द पीपल मैन दे आर ऑल 80-75+ एंड ऑल। लेकिन अगर आप हमारे पार्ट पे देखते हो TLC बेल्ट पे तो ये जो चाम है वहाँ पे अभी भी है जो उनका जो ये वांगचो नोक्ते ये ना उनका जो तांगसा जो ट्राइब है उनका जो ऑथेंटिक विलेजेस है वो अभी भी बरकरार है, उनका जो फेस्टिवल्स है वो अभी भी पूरा धूमधाम से मनाते हैं। तो इसको मतलब एक प्रॉपर चैनलाइज करके मार्केटिंग करके अगर डिपार्टमेंट हो गया या फिर अलग जैसे मेरा जैसे अलग टूर ऑपरेटर हो गए अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो इट ऑब्वियसली बी अ बिग एड ऑन टू द एंटायर स्टेट इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म।
1: जिस तरह सांगे सिरिंग ने एक अनकन्वेंशनल जो एक सर्विस बोले या एक फील्ड को लिया है, उसी तरह दूसरे यूथ किस तरह से आए? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स जितने भी की कहते ना कि वो एक स्टीरियोटाइप है कि इसी लाइन पे जाना है एक पर्टिकुलर, लेकिन वो भी अब टूट रहा है।
0: हाँ आई मीन टूट तो नहीं रहा लेकिन क्या है कि बात लोगों में जागरूकता तो और बढ़ रहा है।
1: जी
0: टूरिज्म तो एक फील हो गया लेकिन आजकल लेटली आप काफी सारे यूथ को डिफरेंट जो इंडस्ट्री में जाते हुए देख रहे हो, तो उसमें मैं तो फिर से यही बोलूंगा कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब मेरे माँ को बोला था कि मुझे टूरिज्म करना है तो उनका भी सेम था कि टूरिज्म ही क्यों करना है और ना आप गाइड करके क्या करोगे। नॉट ओनली माई मदर बट एंटायर फैमिली का ये सोच था लेकिन आई वॉज लाइक यू नो कॉन्फिडेंट इनफ टू कन्विंस माई मदर और उन्होंने बोला कि हाँ जाओ। तो आई मीन पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना वो जो मस्ट है क्योंकि ये चीज में जो है नॉट ओनली इन टूरिज्म लेकिन आप जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आप बिजनेस करते हो आप ना वो ओवरनाइट टू टर्न नहीं होगा जैसे मैंने आपको कहा था, तो उसमें आपको स्ट्रगल तो आएगा। तो पेरेंट्स जिस मतलब जो आपको सपोर्ट देगा ना वही आपका बिगेस्ट फाउंडेशन होगा और फिर आपका हार्ड वर्क तो वो रंग लाएगा ही।
1: तो आपकी तरह जो कोई टूर ऑपरेटर बनना चाहता है या तो गाइड बनना चाहते हैं तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोविजन दिया गया है ताकि जिसको लेकर वो और आगे बढ़ सके?
0: हाँ जी ऐसा काफी

0: है, मान लीजिए जैसे कि मैंने तो क्लास 10 में मैं समझ गया था कि मुझे टूरिज्म करना है, तो सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट हो गया जिनको टूरिज्म के बारे में पढ़ना है या फिर टूरिज्म कोर्स करना है, डिप्लोमा करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो जो डिपार्टमेंट के अंदर में SMSS का एक स्कीम है, सो आई माइट बी रॉन्ग इन द वर्ड्स नोट, तो अगर वो डिपार्टमेंट में जाए तो फिर डिपार्टमेंट विल सपोर्ट देम, आई मीन हिम और हर, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन में।
1: तो जाते जाते हमारे सुनने वालों को क्या कहें?
0: आपने मुझे बुलाया यहाँ पे एज यंग एंटरप्रेन्योर, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स है उन सभी को बेस्ट विशेस, प्लस मैं एज ए एडवाइस मैं यही यही बताऊंगा कि प्लीज हैव पेशेंस एंड ट्राई टू बी हम्बल इन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड यू विल अचीव योर गोल।
1: तो संगीत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में, साथ ही साथ अरुणाचल टूरिज्म के बारे में और हॉलीडे स्काउट के बारे में इतनी सारी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी।
1: ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 MHz है। अभी आप सुन रहे थे वीकली इन्फोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। और आज की कड़ी में हमारे मेहमान थे अवार्ड विनिंग

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, और आप हमारे साथ बने हुए हैं एरोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: साथ में जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

श्रोता वरुण एफएम पर अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s to 80s का। जैसे आप सभी को पता है, इस कार्यक्रम में हम आपको 60s से लेकर 80s तक के कुछ बेहतरीन गानों को सुनवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस पहले गीत से। ये गीत है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, जो आई थी 1960 में, और इस गीत को फिल्माया गया है द ट्रेजिक हीरोइन मीना कुमारी और राजकुमार के ऊपर।

श्रोताओ, अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जंगली से, जो रिलीज हुई थी 1961 में, और इस गीत के खूबसूरत बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने। और हसरत जयपुरी इस गाने को राज कपूर की फिल्म संगम के लिए रखना चाहते थे, लेकिन शम्मी कपूर ने जब ये गाना सुना तो उन्हें बेहद पसंद आया और उन्हें डर था कि कहीं राज कपूर इसे अपनी फिल्म में ना ले ले, तो उन्होंने जल्दी से अपनी बात चलाई और अंत में ये उनके फिल्म का सुपरहिट गाना बना। तो आइए सुनते हैं इस गीत को मोहम्मद रफी की आवाज में।

60s के दशक में भारतीय सिनेमा को जो है मोहम्मद रफी की आवाज रूल करती थी। उनके नाम पर एक से बढ़कर एक आइकॉनिक सॉन्ग दर्ज है, तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी के ऐसे ही कुछ गीतों को।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s to 80s, और ये सारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और अब आपका मनोरंजन करवाते हैं हम कुछ हिंदी फिल्मी गीतों के साथ।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

जहां लफ्जों की खामोशी भी एक राग बन जाती है, वही तो गीत की सच्ची खूबसूरती नजर आती है। जब कोई धुन उतरती है सीधे रूह के पार, हर गीत में नजर आता है कोई अधूरा सा प्यार।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों का और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: defense of Jal, Jangal and Zameen. Sacrificing his life for the nation at the young age of just 25, Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda led the historic Ulgulan movement. He not only opposed the oppressive laws of the British, but also raised his voice against forced religious conversions and administrative exploitation. He united the tribal community and inspired them to protect their cultural heritage and rights. Since morning, a large number of people have been gathering at the Kokar Samadhi Sthal and Birsa Chowk in Ranchi to pay their respects. For Akashwani News, this is Mehvish Rahman from Ranchi.
1: A fragile pause in hostilities appears to be holding across West Asia after a sharp escalation between Iran and Israel that briefly threatened to collapse a two-month-old ceasefire. We have more from our correspondent.
2: West Asia is witnessing a tense and fragile pause after days of intense military exchanges between Iran and Israel. The escalation began with an Israeli strike in Beirut targeting Hezbollah positions, which was followed by Iranian missile launches towards northern Israel. Israel then carried out retaliatory strikes on Iranian-linked targets, deepening fears of a wider regional confrontation. While both sides have since signaled a temporary halt to direct fire, military forces remain on high alert and officials continue to warn that the situation could deteriorate rapidly. Diplomatic efforts are intensifying, with international actors pushing to prevent further escalation and preserve the fragile ceasefire framework that has held roughly for 2 months. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Karnataka, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya till Thursday. IMD also issued a red alert for heavy rainfall over parts of Karnataka, Kerala and Mahe today. Meanwhile, the weather agency has predicted heatwave conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. In men's cricket, India A has set a target of 278 runs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambula International Stadium in Sri Lanka. The men in blue scored 277 runs for the loss of 6 wickets in 50 overs. For India, Ruthuraj Gaikwad's century, coupled with a 150-run partnership with Tilak Varma, helped India gain control of the innings. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heatwave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Tambula, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
4: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनिमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर

0: सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेंतुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
3: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की

0: बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। राज्य के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार, और आप हमें सुन रहे हैं RNFM 103.1 MHz पर।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, यानी कि कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का। इस कार्यक्रम में आपको हम 90s के कुछ यादगार, कुछ बेहतरीन गाने सुनवाएंगे, और आज खास करके 90s के उन गानों को जो आइटम नंबर्स के लिए काफी फेमस हुए थे। तो आइए आपको सुनवाते हैं ऐसे ही कुछ गानों को।

0: हेमा सरदेसाई 90s के एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं जो अपने खास और यूनिक आवाज के लिए जानी जाती हैं। हमने उनके कई सारे गाने तो जरूर सुने होंगे, पर हम अक्सर उन्हें पॉपुलर सिंगर्स में उनका नाम इंक्लूड करना हम भूल जाते हैं। तो आइए उन्हें याद करते हुए उनका एक बड़ा ही पॉपुलर गीत आपको सुनवाते हैं।
1: बेलिसिमो

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s। आप इस वक्त सुन रहे थे ये गीत फिल्म याराना से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म घाटक से अलका याग्निक और शंकर माधवन की आवाज में।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार। उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: This is Priya Badu. Today's headlines are: Jojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather Kashmir-Ladakh connectivity closer. Vice President C.P. Radhakrishnan pays tribute to Bhagwan Birsa Munda on Martyrdom Day. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in last 12 years. BRICS Agriculture Conference begins in Indore. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Defence Ministry clears 250 megawatt solar BESS project on defence land in Uttar Pradesh. Assam's GI-tagged Tejpur Litchi reaches international market with first export to Dubai. ED conducts searches in Punjab, Uttar Pradesh and Delhi NCR in Hampton Sky Realty money laundering case. Pavitra Margarita, the Ministry of State for External Affairs and Textile, Government of India wraps up visit to Lower Subansiri district of Arunachal Pradesh today. India strongly criticizes Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. Fragile pause holds in West Asia after Iran-Israel escalation amid diplomatic efforts. Death toll rises to 37 after powerful earthquake strikes southern Philippines. Ebola outbreak in Congo claims over 100 lives within a month. United States federal judge rules the fee of $1 lakh for H-1B applications imposed by President Donald Trump was unlawful. Spain defeat Peru 3-1 in FIFA World Cup warm-up match in Mexico. The FIFA World Cup will begin on 11 of this month with host Mexico taking on South Africa in the opening match in Mexico City. ICC announces star-studded commentary panel for Women's T20 World Cup. The female-led commentary team features several Indian women. That's all in this news headlines. Namaskar.
2: Ja Akashwani Itanagar. Dugin yashi laika ninan moka bajik samra kin kuma laika song phola ke Manolumpur dugin kuma laika song khrami toksit ka gyachi. Rakin state government hilaka ja Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act ja lohig mo yanat mo kanu mogrin ra laupu anja anri gungle wan draft rules tata hi high power committee law po hai anja ansan ga ngang in vai state government vi winka reports na recommendation anja anwan few po da dala an la hero kin chief minister sri pema khandu ka an committee gungle shaw mo members shaw po ra ka chairman anja ansan vi congratulate kar po ka fin vi hakun po anja ansan ka to an win kam mang sir ka ka po report few po de ka thau po ra anja anan ro vikaro kin state ra Home Minister Sri Mama Natung Rakara Balo Raja Sauga Kento Jini Anja Ansan Kane Angung Luxit Contribution Kaupu and Report the Ladhi Recommendation San Luxit Piu Puneka Vika Hakun Puda Dala Rakin Arunachal Pradesh Ra State Helaka Kin Raja Sabha has seat Kumokam Anja Ankangto Election Human Tipi Kin BJP candidate Nja Tai Takak Nja Anka Kin Arunachal Pradesh State Legislative Assembly He Anka Nomination Paper 1 Tha Yada Dadla Nja An Nomination Paper Pim Tara 1 Kin State Chief Minister Sri Pema Khandu Varaka Deputy Chief Minister Sri Chaunamin State BJP President Kaling Moyong Nja Ansan Ne Tushan Dada Dadla Varaka Anlai He Kin Chief Minister Sri Pema Khandu Ka Thaupu Anja Tai Daga Anja Anwan Kin State V Wan Texit Ribajan Kambang Kin State Ra Shanso Public Show Phanmala Samta Wan Win Kambuing Yit Mo Kin State Ra Lai Chu Wan Kin V Parliament Hai Raj Sabha Hai Tane Ka Kin Lai Chu Wan Tha Mang Sit Ka Tha Mang Dane Ka V Tin Mang Dane Ka Thaupu Da Dadla Rakin Arunachal Pradesh State Government Hilaka Anja National Institute of Technology Kin State Rakam Anja Anang Wan Winka MOU Sign Ka Upada Dala Anja An MOU Wan Ngangit Vai Sign Ka Upo An Hilaka Win Kin Arunachal Pradesh Gungra Ali Artificial Intelligence Center of Excellence Anja Ansan Wan Trayu Mana Kheupo जा अन एम ओ यू हेला कवन टोकिन अरुणाचल प्रदेश अंजा अन वी डिजिटल अरुणाचल तत्रा हे चंपा है था ने अंजा अन ही सत मांडू ने का खेवपुदा दादला राटकी वांग टीग्रम सो मंडम थी ही किन अली अपर सुबनसरी डिस्ट्रिक्ट गुंगली गीबार सर्कल अंजा अन गुंगली वन वांग्रम सो मंडम थी ही ब्लोंगटोंग वन रेला अंजा ब्लोंग वन कंबुई ची का क्राम लो ने का खेवपुदा दादला अंजा अन सर्कल गुंग लिवन कतरमो कंग्लात ग्लात चोंखाय कमाय काम ब्रकार अनसन हेवन हिंगक्लेन कंग्लात ग्लात चोंखाय कमाय चंग तो तो अंजा अनसन कंगवन तिथि तलोंग मका था ब्लोंग गोंग रैला दने का खेपु ब्रकार तसी तंगा छाछो कमाय हि थे मटाव लोंग मटाव अंजा अनसन वन तो ला अनतेम फी हि वन तो ग्लात चोंखाय कमाय संका शोमो अथॉरिटीज चंग तो अंजा अनसन वे ब्लोंग गोंग अनवन फिफे त्राना सि दने का विन का लाइ छु पिउ मंदा खेपु वरकर गिबा है जेट पी एम अंजा मयूम डोबिन का थाउपुर दो शोमो अली कंसर्न अथॉरिटीज ब्लोंगडोंग ट्रामा अंजा अंसन निवन लाइ छो वन फिली वरकर तो अंसन वी किन सार मै तो अंजा ब्लोंगडोंग अनवन थिवेक सिट का कत यो मान दो नेका ग्लास जों खै कमै सकांग मफान मला समंग हि तिथि दलोंग ग्रोंग दो नेका विका लाइ छो फी पुदा ख्रेबु राकिन अरुणाचल प्रदेश गुंगरा अली तवांग डिस्ट्रिक्ट हेलाक डिस्ट्रिक्ट पुलिस वरकर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नंग अंजा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंजा अनगुंग लेवन कैरियर काउंसलिंग वरकर अवेयरनेस प्रोग्राम विचे का था पुनिंग दादला अंजा अनवन काउंसलिंग वन तवांग है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ले था पो अंजा अलंग वन स्कूल सा अली वे टाम गुंगलाद अंजा अंसन का पार्टिसिपेट का हो अंजा अलंग वन छो मोले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेला ऑफिसर्स चंग टाउ अली एडीसी रिंचिन लेटा वरका एसपी तासी दरंग अंजा अंसन फाइलांग ऑफिसर्स ने ट्यूशन तदा ख्रेबु अंजा अन अवेयरनेस कैंप अंजा अन वन साक सेक्शन भी अली सीतंग आतंक मटो ड्रग्स ला मटो वरकर एनडीपीएस एक्ट पोक्सो एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट वरकर न्यू क्रिमिनल लॉस अंजा लापो अंजा अंसन नि विन का लाइचो ख्रेबुदा दादला गजराज कोप अंजा अंसन हेला का टोकिन कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप अंजा अंसमन गुंग लक वन विन का तो शोमो अले एनसीसी कैडेट हो का फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन अंजा अनहेला का वन अंसन वन मोटिवेशनल लेक्चर बुरा करा वेपन डिस्प्ले अंजा अंसन वन खाओ पद डाला अंजा अन डिस्प्ले वन नेरिस नेजुली ले समा अंजा अन वन इन्फेंट्री यूनिट हेला का तो शो मकिन मॉडर्न इक्विपमेंट्स काम इंडियन आर्म फोर्सेस फा अंजा अंसन वी एनसीसी कैडेट अले वे एक्सम उपिंग मो कंगात हो का अंजा अंसन रा का स्कूल सा हो का अंजा अंसन वी खाओ पुदा दाला तवांग एडमिनिस्ट्रेशन हेला का तो शोमो अले क्लास चों खाई कमाई चंग तो वरा कर एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफिसर्स चंग तो अंजा अंसन वे किन डिस्ट्रिक्ट गुंगली ग्लेशियर लेक और बर्सफर्ड अंजा सो हेला का यौमन का अंजा वांग टीप क्रम सो मन दम फी अंजा अंजन हेला ची फो हों अंजा अन वी ग्लेशियर लेक और बर्सफर्ड दम तो अंजा अन अंजा अन वन तो सामांग काम दने का विन हेला का वार्निंग फ्यू बुद दादला वरा कर तवांग डिस्ट्रिक्ट गुंगली अले Disaster Management Department anja anwan vika krepo to Center for Earth Science uraka Himalayan Studies selaka anja glacier lake outburst flood kin district gungle anja tawang gungle samang kam mi anja anmi chomo le department sang do anja ansan bi warning pinai marpangkang anja an mapanmala samang hi jange do ne ka krepo da dala uraka glass chung khai kamai uraka Indian Army IDBP BRO anja ansan viksit jangne chakye chomo supplies to my emergency shut शन तुरमा अंजा अंसन इमरजेंसी समंग रा मका समंग अंजा अंसन मक्सित विन का जंगे दुने का लाइ छु फ्यू पुदा ख्रेपु मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर हेला का ख्रेपु तो अंजा पपुम पड़े शियांग वे शियांग रा लोवर दिबांग बली अंजा अंसन कांगवन ओरेंज एलर्ट फ्यू पुदा डाला रा अंजा अन्ना रो अपर शियांग ई शियांग अंजा अंसन

नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ में मुचलांग खामते खामते हो कुमा हो मने वन अंका लगनी पीते सोंग हिंग पा साउ तो सक्रे पीमुंग हिंग सांपा पेट सपेट तो सासना सोंग हिंग हापा टेट सप तो इंगनाची पीमुंग सोंग हिंग साउ हु तो नुनजुन नई कौन खौखाम लुक चौ तान से नमसो मै हने थोम खाता हाई पावर कमिटी अन औ अमा खाम तकमी थुंग तेम थुंग चा हंग चोंग कने अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 खौ वन मंगा ताई स्टेट गवर्नमेंट माई रिपोर्ट अन खौ सबमिट कयाओ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू फुंग कमिटी लोयतंग चेयरमैन जस्टिस रिटायर चुवा ब्रजेंद्र प्रसाद कताकी खौ मे खौमाय केचू तंग तखा कयाओ मिनिस्टर मामा नातुंग बालू राजा खानसम केंटोजिनी खौको लोंग नेमाय हुम लुई कंसी हित अमु कनाय चीफ मिनिस्टर खांडू खौमाय युंगयु पिचुम कयाओ वन मंगा चाहंग राजा राज्यसभा सीट लोक अरुणाचल प्रदेश न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी कैंडिडेट ताई तगक मन चाओ नाय नॉमिनेशन पेपर फाइल गया मुनाई तंगमन चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू डिप्यूटी

0: chom nang akhing nam nali na studio mai chicken ma ba pha poine thon si chahang manai khamte khamti ho tu khai mai sodyo ho
1: श्रोताओ आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम जिसका प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओ आप हमारे सारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आई श्रोता बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर यानी कि कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट की ओर। और बॉलीवुड अपडेट में पहली खबर है कॉकटेल 2 का क्रेज पहले से ही पीक पर है। ट्रेलर हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है, गाने सुपरहिट हो रहे हैं और कॉकटेल 2 इस साल के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सिनेमैटिक इवेंट्स में से एक बन चुकी है। इस एक्साइटमेंट को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए मैडॉग फिल्म्स और लव फिल्म्स लेकर आए हैं कॉकटेल 2 म्यूजिक फेस्टिवल, एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला आइडिया। ये होगा एक लाइव सिनेमैटिक यूनिवर्स एक्सपीरियंस जहां फिल्म के सारे हिट गाने ओरिजिनल सिंगर्स के साथ स्टेज पर लाइव परफॉर्मेंस करेंगे एक हाई एनर्जी कॉन्सर्ट के स्टाइल में। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म के स्टार कास्ट इस जश्न का हिस्सा बनेंगे, फैंस के साथ इंटरेक्शन करेंगे, यानी कि मामला पूरा पैसा वसूल वाला है। मैडॉग फिल्म्स और लव फिल्म्स के सिग्नेचर बड़े स्केल वाले एंटरटेनमेंट स्टाइल में कॉन्सेप्ट किया गया ये कॉकटेल 2 म्यूजिक फेस्टिवल एक कल्चरल मोमेंट जैसा फील देने वाला है। होमी अदजानिया के डायरेक्शन में बनी कॉकटेल 2 दिनेश विजन, लव रंजन और अंकुर गर्ग के प्रोडक्शन में तैयार हुई है। कहानी तरुण जैन और लव रंजन ने लिखी है। ये फिल्म 19 जून को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सैनन लीड रोल में नजर आएंगे। तो आई श्रोता आपको इस फिल्म का यानी कि कॉकटेल 2 का ये गाना सुनवाते हैं।

श्वेता कपूर को पिछली बार 2026 में हिट फिल्म स्त्री 2 में देखा गया था, लेकिन फैंस उनकी अगली फिल्म इत्था के बारे में अपडेट का इंतजार कर रहे थे और अभी फिल्म मेकर्स ने आखिरकार घोषणा कर ही दी कि ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी। उन्होंने अपनी घोषणा में लिखा है कि प्रोड्यूसर दिनेश विजान और डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर 2025 में छावा फिल्म के बाद इत्था के लिए फिर से साथ आ रहे हैं। ये एक बोल्ड और इमोशनल फिल्म है जिसमें श्वेता कपूर एक दमदार और अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म में श्रद्धा के अलावा रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान आयुब भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। खबर है कि रणदीप हुड्डा फिल्म में मेल लीड और रोमांटिक रोल निभाएंगे। फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। ये फिल्म आ रही है 28 अगस्त को सिनेमाघरों में और इत्था महाराष्ट्र की मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मंग नारायण गांवकर की जिंदगी पर आधारित है। इसकी कहानी 1940 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक फैली होगी जिसमें उनके मशहूर होने का सफर और उनके संघर्ष दिखाए जाएंगे। तो श्रोता, इस फिल्म का गाना तो हमें जब ये रिलीज होगा तब सुनने को मिलेगा। तो आइए आपको सुनवाते हैं श्रद्धा कपूर के कुछ एक पुराने फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे पांचों श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ईजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जून लेन नि आकु तारिक मंगलबार इपहांस आजमबाजी पुनी मिनट मुई के पिशम लकेम वांचो साइका पों कपे पों कहा पों फाले वांग का वांग सुई अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट अफरा 1978 वालम अंक ड्राफ्ट रूल्स वालम जिंगजौ अंग काम क्या हाई पावर्ड कमिटी होथम ए होम रिपोर्ट हिया रिकमेंडेशंस का मंजी स्टेट गवर्नमेंट चकमा कोडवा बोमाजबामा हजा मोथो हले मोकसाले लन लफा क्या हन पकमा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए हजा कमिटी होथम चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड ब्रोजेंद्र प्रसाद कतकी हिया कमिटी मेंबर्स थम आसू पुला अचौक असनले खांडू अच बो महाज कमिटी थम तो चो अफोंग असुन आसे हुदो क्या हान पकमा मिनिस्टर मामा नातुंग बालो राजा हिया कैंटो जेनी अम चु आचोक असन हुले अरुणाचल प्रदेश के ता वै तैजौ राज्यसभा सीट मा बीजेपी थम कैंडिडेट अंग आजोंग अंक ताई तागक ए जी नॉमिनेशन लाइ मनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मा कोदवा काउमा आजंग बाजा मा तागक फैतम ले स्टेट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोनामेन स्टेट बीजेपी थम प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग पार्टी स्टेट इंचार्ज अशोक सिंगल हिया स्टेट बीजेपी हो थम अंक्या आचोंगलो लीडर्स थम योहा कहिले बकले डिजिटल अरुणाचल विजन मोथो लनपुकु मा चोन के ता खत खा क्या यो चिकाप चोन चेन मा स्टेट गवर्नमेंट ए मनी National Institute of Technology NIT Arunachal Pradesh Tham Phai Ta Artificial Intelligence Center of Excellence AICOE Da Pazing Angkya Hanpak Makya MOU Ka Phan Lai Ngak To Tip Shing Lai Zandwa Kahoma Ajang Bhaja MOU To State Council for IT and E-Governance Siya NIT Arunachal Pradesh Otham Ni Atipshing Lai Zale Bomaja Tuso Ma State IT and Communication Secretary

डॉक्टर सोनल स्वरूप चु हक ले आपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट गीबा सर्कल मा ले इन के तबी नी तो खंग ए होनु मा जो बा लंगो के जंगबत फोम छि खो मा दे के नेत नम ए पुते बो मा लुची लुटे पीएमजीएस वाई लमसाई तबी यो नु तो अमा छि द तो ल तैले मो मा जा खो मा हाजा सर्कल मा के हक सा तकु यो टिंग नोक फो कनक नु फै तले यो सिंग न तो तया पोंग लंगो ले तैले हजा बाम हजा गीबा सर्कल जेट पीएम मायम डोबिन ए हजा सिंग एन तोय तै बा मके कांग कंसर्न ऑथोरिटीज थम हा तो पोंगताई ले को दो पु ले फनन तोले हजा तोय तै जिंगे जो ले आ मायंग ऑथोरिटीज थम चोन खाइ ले वे ना जिग ना फथयाल ओंग हु तै पु ले वन ले तावंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस थम ए मनी एजुकेशन डिपार्टमेंट थम फाइ आशम थम मन क्या ए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम अंकिता मोथो सेन मा तावंग होनोई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल माता कैरियर काउंसलिंग हिया अवेयरनेस प्रोग्राम तु सो अंगोट आसोले बुमहाजा मा डिस्ट्रिक्ट मक्या माओ मामो होनोई तो क्या मिहक हो आजोक तक जो लाइन नौसम हकाहैले अजा प्रोग्राम मा एडीसी रिंचिन लेता एसपी तासीदारंग एसी संगे नोरबु डीएसपी तासो काटो हिया मामो रिसोर्स पर्सन थम यो हाकाही ले बोमा होम आजा मालान नसम अं ड्रग हिंग हाय युवाउ हिया वनखु हाहिंग तासा तालिंगो लक्या बोमा एनडीपीएस एक्ट पोक्सो एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट हिया होजन क्रिमिनल लॉज वालंपो बा मा अपोनो ले कोतोन ले गजरास कोप सिपाही होथम ए मनी एनसीसी कैडेट्स थम मोंगकन आचोंग आचन अंग तुंगता क्या चेन मा फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बैटालियन एनसीसी होथम कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप टू सो मा मोटिवेशनल जंगवन का जे अंग बोमा होम हापजन वेपन्स अहो अंग ता टू सो अंगोट असोले काहोमा अजंग बाजा सिपाही होथम अंकेता इन्फेंट्री यूनिट थम ए हजा हापजन डिस्प्ले टू सो निर्जुली होनोई मके नेरिस मा अंगोट असोले बुमहाजा मा फर्स्ट एपीबीएन एनसीसी होतम सीओ या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नी चु हकाहैले ईरान हे इजराइल देश नी ए ताता तोक्या थों अभियान दोई शोंगजक अंक्या का तें फन दवा हजा बामा इजराइल देश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ए ता स्टेटमेंट का मा होम डेस डिफेंस फोर्स सिपाही होतम ए ईरान डेस तो क्या थोप जान दुई दान जग दो थेबा ईरान ए चले हाब दुई ले जंग हई मा हजत होम ए जान ले मा हुनु मजो थोप जान दुई क्या ले वनसे ले मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर एमसीआई तो खंग ए अरुणाचल प्रदेश अंके पापुम पारे सियांग वेस्ट सियांग लोअर दिबंग वैली अपर सियांग ईस्ट सियांग कराडाडी लोअर सुबनसिरी लोअर सियांग लेपरेडा लोहित नामसाई लोंगडिंग या आंजौ डिस्ट्रिक्ट फोमा आनी जंग आदुंगा किंगपू ए ले होनु मा यो वातेला लक्या ऑरेंज अलर्ट का हो फाले तैले का हो इवई

श्रोताओं, आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, और इनके आगे के कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप ट्यून इन करिए मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गानों की ओर और आपका मनोरंजन करवाते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नया नया प्यार जिंदगी में एक बेहद खूबसूरत और जादुई एहसास लेकर आता है, जहां हर लम्हा नया और हर बात दिल को छू लेने वाली लगती है। इस मासूम और शुरुआती मोहब्बत को परी ही बखूबी से बयां किया है इस अगले गीत में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, और अब से थोड़ी देर में यानी 4:20 पर आप सुनेंगे तानसा श्रोताओं का कार्यक्रम, और उसी के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का सेकंड ट्रांसमिशन। पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारे तीसरे ट्रांसमिशन के लिए आपके साथ जुड़ेंगे आरजे मंजू। तो अब मुझे यानी कि आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी को आप दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर।

नमस्कार दोस्तों, तांगसा डायलेक्ट न्यूज के बाद बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में। वेल थैंक यू सो मच सुम्पी जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत सुहाना बीते। श्रोता स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:28 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा।

ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो।

0: दोस्तों हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि हम आपका भरपूर मनोरंजन कर सके, तभी तो एक से बढ़कर एक मजेदार गीत चुन चुन कर लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सिर्फ गीत ही नहीं, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराते हैं आपको हमेशा। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं ज्ञान एवं मनोरंजन पर आधारित कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।
1: Good evening, Itanagar.

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का। हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ हाजिर हो गई हूं आपके लिए और साथ ही साथ कुछ अच्छी और जरूरी बातें भी करेंगे आपके साथ। श्रोता, अक्सर हमने देखा है कि हमारे आसपास में उगने वाले कई ऐसी सब्जियां होती हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन हम इन सभी चीजों को अनदेखा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी ही सब्जी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अच्छी है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज हम बातें करेंगे टर्की बेरी के बारे में। टर्की बेरी, जब मैं ये नाम बोल रही हूं आपको आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी सब्जी है, पर ये एक छोटी सी हरी बेरी जैसी सब्जी होती है जो कई जगहों पर जंगली बैंगन या कांटेदार बैंगन भी कहा जाता है। इसे अक्सर हम अपने घर के आसपास भी देखते हैं, जिन्हें हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे हम कहते हैं तीतागुती, जो थोड़े से स्मॉल साइजेस में होते हैं, मटर के दानों जैसे दिखते हैं, लेकिन यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। बहुत सारे गुणों से भरा होता है टर्की बेरी। तो अगर आप अपने आसपास ये देखते हैं तो प्लीज इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करिए। आइए इसके फायदों के बारे में बात करते हैं। शरीर में खून बढ़ाने में सहायक इसमें आयरन की मात्रा होने के कारण ये बहुत ही लाभकारी है। यह खून की कमी यानी कि एनेमिया को कम करने में सहायक माना जाता है। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और कमजोरी कम होती है। इसमें मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद करते हैं, जिससे सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों से बचा जा सकता है। टर्की बेरी, जो फाइबर से भरपूर होता है, भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है। कब्ज, गैस या फिर पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम भी करता है। यह रक्त में शुगर यानी कि खून में शुगर लेवल को संतुलित यानी कि बैलेंस रखने में मदद करता है। इसीलिए इसे सीमित मात्रा में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक है। यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। और भी बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों टर्की बेरी के, यानी कि इस छोटे से हरी मटर जैसे दिखने वाले कांटेदार बैंगन के। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है।

0: बजरंगी भाईजान फिल्म से। बने रहे इसी तरह से हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 MHz पर।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का मोहित चौहान और प्रीतम की आवाजों में बजरंगी भाईजान फिल्म से। आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज मैं इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता रही हूं टर्की बैरी के बारे में, जिसे हम आमतौर पर कांटेदार बैंगन भी कहते हैं, जो मटर के दानों जैसे होते हैं। दोस्तों, यह शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में भी काफी मददगार साबित होता है। और तो और, कम कैलोरी और अधिक फाइबर होने के कारण इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस रहता है, जिसके कारण बार बार भूख लगती ही नहीं है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में भी मदद करता है। शरीर की सूजन कम करने में भी ये काफी मददगार होता है। इसमें सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। और फिर दोस्तों, विटामिन ए होने के कारण ये आंखों की रोशनी और आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो इतने सारे फायदे अगर हैं इसमें, तो क्यों ना अपनाएं हम इसे अपने डाइट में। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिससे शरीर अधिक स्वस्थ महसूस करता है। दोस्तों, अगर आप अपने आसपास टर्की बेरी देखते हैं तो प्लीज इसे अपने डाइट पर शामिल कीजिए। यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। और हाँ, एक बात तो हम सभी मानते हैं कि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन करना कभी भी वो लाभकारी होता ही नहीं है। इसीलिए जो भी आप इस्तेमाल करते हैं तो सही सीमित मात्रा में ही किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का, जिसे हमने लिया है अनजाना अनजानी फिल्म से राहत फतेह अली खान की आवाज में।

श्रोता राहत फतेह अली खान के गाए हुए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार बातों और गीतों के साथ। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नॉक्टे डायलेक्ट न्यूज और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक नॉक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवाद संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। गजराज कॉर्प्स द्वारा वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान एक प्रेरणात्मक व्याख्यान तथा हथियार प्रदर्शनी का आयोजन। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तवांग के अंतर्गत बीएमएमयू की पहल पर आज तवांग में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसआई के उद्यमी इंडिया पंजीकरण पर एक दिवसीय पंजीकरण शिविर आयोजित। डिजिटल अरुणाचल के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने AICOE की स्थापना के लिए NIT अरुणाचल प्रदेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 4 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और पुरुष क्रिकेट में दुम्बला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रही है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवाद संगठनों के फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानैनी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमले के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्रप्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई क्षेत्रों का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग में लाई जा रही आधुनिक सैन्य हथियार प्रणालियों, निगरानी तंत्रों तथा उपकरणों, जिनमें से अनेक स्वदेशी रूप से विकसित है, जिन पर जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से गजराज कौर द्वारा वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन एनसीसी के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के दौरान एक प्रेरणात्मक व्याख्यान तथा हथियार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक इन्फेंट्री यूनिट द्वारा राज्य के पापुमपारे जिले के निजुल स्थित नेरिस्ट परिसर में 1APBN एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे और हथियार एवं सैन्य उपकरणों में प्रदर्शनी की आयोजित की गई। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन SRLM तवांग के अंतर्गत BMMU की पहल पर आज तवांग के वॉक थ्रू मार्केट स्थित BMMU प्रशिक्षण हॉल में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई तथा उद्यमी इंडिया पंजीकरण पर एक दिवसीय पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए BMMU तवांग के डॉक्टर सेवांग तोरजी ने औपचारिक पंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महिला उद्यमियों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने उद्यमियों को सुदृढ़ करने एवं विस्तारित करने का आह्वान किया। डिजिटल अरुणाचल के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी AICOE की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT अरुणाचल प्रदेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। ये MOU IT और कम्युनिकेशन सेक्रेटरी डॉ सोनल स्वरूप की मौजूदगी में स्टेट काउंसिलिंग फॉर IT एंड ई गवर्नेंस SCITEG और NIT अरुणाचल प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर MB अवारे और साथ ही SCITEG के डायरेक्टर सह मेंबर सेक्रेटरी नीलम यापिंताना ने हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान में देशभर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे में कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग और कुरुमकुमे जिले को छोड़कर सभी अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही अन्य 4 जिलों पापुमपारे, सियांग, वेस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा है कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
5: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: पुरुष क्रिकेट में दाम्बोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रनों का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 35वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए हैं। ये मैच श्रीलंका के रंगीरी दाम्बोला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: This is Akash Vani, the news read by Priya Badu. India strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Parvathaneni Harish, slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan. Prime Minister Narendra Modi today said the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on the path of service, good governance and prosperity. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that the country's foreign policy has witnessed significant transformation in the past 12 years. In a social media post, Dr. Jaishankar said the government facilitated access for Indian nationals to the global workplace and supported Indian businesses getting market access abroad. He said 44 embassies and consulates were opened to address the needs of Indians. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System today in New Delhi. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports in a unified system. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Multiple sessions are scheduled to be held today on topics which include food security, farm innovation, climate-friendly farming, cultural trade and empowering small farmers. The Enforcement Directorate is conducting search operations at 6 premises across Punjab, Uttar Pradesh and Delhi NCR in connection with a money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. The case is linked to Aam Aadmi Party leader and Punjab Minister Sanjeev Arora. ED has said that fake GST purchases of mobile phones worth over 100 crore rupees were used, followed by exports to allegedly round-trip illegitimate funds from Dubai to India. Zozila Tunnel has achieved a significant milestone today with final breakthrough. The breakthrough has brought the decades-old dream of all-weather connectivity between the Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari pressed the remote button, blasting a breakthrough site near the east portal of the tunnel at Minimark in Ladakh. With the breakthrough completed, focus will now shift to the remaining construction and finishing works required to make the tunnel fully operational. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. Due to continuous government efforts, India's maternal mortality ratio decreased by 43 points from 130 maternal deaths per lakh live births in 2014 to 2016 to 87 in 2022 to 2024. Jharkhand, along with the rest of the country, is paying tribute today to the great freedom fighter and Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda on his death anniversary. In the history of India's freedom struggle, sacrificing his life for the nation at the young age of just 25, Bhagwan Birsa Munda led the historic Ulgulan movement. He united the tribal community and inspired them to protect their cultural heritage and rights. A fragile pause in hostilities appears to be holding across West Asia after a sharp escalation between Iran and Israel that briefly threatened to collapse a two-month-long ceasefire, while both sides have since signaled a temporary halt to direct fire, military forces remain on high alert and officials continue to warn that the situation could deteriorate rapidly. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Karnataka, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya till Thursday. That is all in this news bulletin. Namaskar.
7: आप सुन रहे थे हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन पाएंगे नॉक्टे श्रोताओं का कार्यक्रम।
8: अब आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ वा नॉक्टे प्रोग्राम अथुरंग जाता वन बंगा सानपो तंग नंग नॉक्टे खोबोचो तत्कत तेजामोंगन बाजा नौ तारीख जून जंग खोबोचो को देपा किम किम तेसिया Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act, AFRA 1978, Draft Rule Bonarang High Power Committee Bonata, Arpa Humba Chako Report Nia, Recommendation Pa State Government Nang Submit Honka. Chief Minister Pema Khandu Ma, Committee Chairman Justice, Bojendra Prasad Kata Ke Diko Ahan Members Nang Hane, Hard Work Commitment Diko Dedications Tha Congratulate Honka Diko Nyarang Dang Kua Ngai Ka. Tema Minister Mama Natung Balo Raja Tiko Kento Jini Leadership Ko Nia Pura Process Ko Active Involvement Tha Nya Arang Tarifon Ka. Digital Arunachal Vision Pa Manang Bora Arang State Government Mamaja NIT Arunachal Pradesh Damnang Vante MOU Memorandum of Understanding Sign Hon Ka Ara Agreement Aim Pa Artificial Intelligence Centers of Excellence AICOE Establish Hon Rang Hon Ka. Ara MOU pa State Council of IT and E-Governance Diko NIT Arunachal Pradesh Tungnang IT Nia Communication Secretary Dr. Sonal Swarup Present Put Ko Sign Honwa. AICOE pa India AI Nia Ministry of Electronic and Information Technology Support Chomin. Diko Center Research Innovation Skill Development Startup Diko Digital Transformation Rang Wante Important Hub Ko Ko Kamotmen. BJP candidate Tai Tagak Mamaja Arunachal Pradesh wa Rajya Sabha sit rang nomination paper file honka. Ara occasion ko Chief Minister Pema Khandu, Deputy Chief Minister John Amin, BJP State President Kaling Moyung, Party State in Charge Ashok Singhal, Senior Party Leader Diko Supporter Seimin present dangwa. Nyarang continuous days rang pat tha Upper Subansiri District, Giba Circle wa Amungja Jaganang landslide la Lamman Rudhatka. Artha almost Rugni Numaja Village, Hajat Banga Populations Numaja. Arehe Ahanja Gahe Damnang Tanghat Minka. Puti Nia Luchi Luti PMSY Lampamin Nyarang Rangpat Tha Chi Jaika. Artha Transportation Emergency Medical Service Nia Zaruri Sommak Supply Rang Nyarang Problem Deka. Village Minyanhe Ma Road Connectivity Pa Buklasansi Rang Appeal Honka. Giba JPA Mayum Dobin Mangeka Ara Matter Pa Amama Concern Authorities Nang Kujwan. Dikote Ma Hope Dilaika Ara Problem Pa Bukla Solve Idangangama. Beti Bachao Beti Parao Initiative Khonma Education Department's Collaboration Damnang District Police Tawang Ma Humba Chako Government High Secondary School Tawang Nang Career Counseling Cum Awareness Program Organized Honwa. Our program ko district wa Ahan Ahan School wa almost Chairok students ma participate kapka. Program ko ADC Rinchin Lata SP Tasi Derang AC Sange Norbu SYSP Taso Katonia Ahan Resource Person He Min Present Dangwa. Program Put Ko Students He Nang Drugs, Alcohol, Tiko, Tambaku Wa Nuksan Nga Nang Jankari Kweka. Aradam Ko NDPS Ek, POKSO Ek, Motor Vehicle Ek Nia New Criminal Law Nga Nang Min Awareness Sessions Conduct Honwa. Gajaraj Corps Pamaja Arunachal Pradesh Battalion NCC He Combined Annual Training Camp Pot Ko Motivational Lecture Nia Weapons Display Conduct Honwa. Naris Nirjuli Nang Organize Honka Ara Program Ko Charom Rupanga Numaja NCC Cadets Nia Students He Participate Kavwa. Ara Event Aim Pa Youth He Nang Indian Army Force Modern Weapon Civilian System Diko Military Equipment He Nganang Jankari Kurang Huanka. Arunachal State Rural Livelihood Mission Tawang BMMU Initiative Konmathaja Walk Through Market Tawang BMMU Training Hall Nang Fesainia Udyami India Registrations Kho Nang Ngite Registration Kem Organize Huanka. Dr. Sevang Dorji ma formal registration importance ko nang highlight hon ka diko. Woman entrepreneur he nang opportunity uthalam ma business pa jomin majput ponarang encourage hon ka. Are kem ko rukbali participant he participate kavwa. Are ko woman self-help group, SSGS members, mother kitchens members diko local woman entrepreneur he attendang wa. Are kem ko amungja enterprise he successfully register hon ka. Meteorological Center Itanagar ma state wa Amungja district herang weather related alert issue wanka. Papum Pare Siang West Siang Lower Dibang Valley district rang orange alert issue wanka. Aradamko Upper Siang East Siang district nang rang lin kip balip diko rang padong tapadangeka. Gradadi district Lower Subansiri Lower Siang Lepa Rada Lohit Namse diko Longding district he nang men rang lin kip balip diko rang padong tapadangeka. Diko Anjao district nang yarang rangpat tapat angama predikwan ka. Tejanang nokte kubot pa akujirathon mangta. Aro Akashwani Itanagar Dibagarwa se program khabang ko janiam abo walo nyan setat mangan.

नमस्कार दोस्तों, नोक्टे डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। चलिए मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की ओर।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

तो श्रोता कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में आप आनंद ले रहे थे पति पत्नी और वो दो फिल्म के गीत का, और इस वक्त आप सुन रहे थे इस गीत को मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से।

श्रोता श्रेया घोषाल के गाए हुए भूल भुलैया ट्री फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप निराश बिल्कुल भी मत होइए क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम शाम की महफिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम शाम की महफिल की ओर।

मुझसे इतनी ना बात कर कि मैं याद बन कर रह जाऊं, मुझे इतना ना याद कर कि बस एक रात बन कर रह जाऊं।

दोस्तों, जब हम अपने मनपसंद गीतों को सुनते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम शाम की महफिल में। जस्ट के गाए हुए गीत के बाद इस वक्त आपने सुना इस गीत को नीति मोहन और लखविंदर वदाली की आवाजों में। अगला गीत पेश करने जा रही हूँ आपके लिए स्टेबिन बैन और आशीष कौर की आवाजों में।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का, और आनंद ले रहे हैं इस गीत का आतिफ असलाम की आवाज में।

तो नेहा कक्कर और रोहन प्रीत के गाए हुए इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का।

श्रोता, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आप हमारे साथ आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का, और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में बादशाह फिल्म से।

श्रोता, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अब से बस कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से आदि डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक

आकाशवाणी ईटानगर तनाखिदिंगम आसेरुप कुम्रिक्षिदल आसियुम के आदिपवम इरबतुम कराफ आदि लुतादम तत्फाइल विनस्तबुक तली ओनासोल फोटेस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक आफ्रा 1978 लेगंग फे हाई पावर कमिटी कोफालन बोसिदोला इपलुप नाम रूल आयोन एम आदलन गबोपाला रिपोर्ट एम स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन इदफ गिकाना बॉडी कोंगडेलो बिलिक केबोतो आगेर सिम कमिटी पालर नाम लोक चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड बोजेंद्र प्रसाद काटकी देलो मेंबर्स तकाम ए तोलिक पोसिला बुलुक तोगेव सिनम आगेर सिम कामपोरुप गेरिन गेबो नाम एम चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू बे बोजेरुप कोइत आगम एम बिकान गेबो तुंग आफ्रा लोक रूल्स कामपोना इलन गेबो नाम लेगांग पे मिनिस्टर मामाना तुंग बालो राजा तेलो केंटोजिनी बुलुक मुदुम बमला आगेर गेर मेन के नाम किदिंग एम कॉम चीफ मिनिस्टर पिपोजे रूप कोई तो अरुणाचल प्रदेश सोग राज्यसभा सीट अतल लेगांग फे ताई तागाक बुई बीजेपी कैंडिडेट पे नॉमिनेशन फेफार काकोत एमएलओ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लो बिलिक तो नॉमिनेशन पेपर बिलिक तो पेबोलो सीट मिनिस्टर फेमा कांडू डिप्यूटी सीट मिनिस्टर सोनामिन स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट कालिंग मोयोंग फार्टी स्टेट इंसर्स अशोक सिंहल सीनियर फार्टी लीडर्स तेलो ताई तागक में तोलिक नाताकाम ए इरगा मुआरू पर दूरी पोसितो ताई तागक के नॉमिनेशन पेपर बिलिक नाम सिम काला सीट मिनिस्टर पेमा कांडू बीजेपी आरान लोग येजी दूजिंग के बोनाम देलो पार्टी लेगांग पे आगेरा नाम कंपोना गिरगे बोनाम तकाम एम लुपांगे बोदोला राज्यसभा लो लीडर को पे तुंगिंग के बोये मिलो और नासोल स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट आई कंपो लेगांग पे आरो ना आगम पोयन एम राज्यसभा लो लुगे पोगे बोयारिये पे एम ला लुकान दो लुतात्सिम आकाशवाणी ईटानगर लोक तत्पादुंग डिजिटल इंडिया लुबोम दु नाम सोक आई कंपो एडिंगलरिंग पनाम तकाम एम काबोम दोला स्टेट गवर्नमेंट एलंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश ए लेकोबोसिदोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को इलिक बोसिदो पे एमओयू काकोट एमएलओ साइन बोसितो अगर सिम स्टेट काउंसिल फॉर आईटी एंड ई गवर्नेंस एलंग एनआईटी अरुणाचल प्रदेश ए गिरगे बोतो पे एमओयू साइन सिम आईटी एंड कम्युनिकेशन सेक्रेटरी डॉक्टर सोनवाल स्वरूप के करालो इगे बोतो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंडिया ए आई ए तोलिक के बोला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आरंगलो इगे बोये अगर सिम इलेन के बोनाम दे अरुणाचल स्टेट ऑफ मोले तकामलो स्किल डेवलपमेंट कंपोनाम रिसर्च आयोन ए कंपोनाम देलो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ए दिलरी नंग बेगा पे इलेन के बोतुंग लो निलोंगुम आरासो बोजेरु फेफेदों ओटिकोलो आपार सिवों सिरी डिस्ट्रिक्ट लोग गिबा सार्कुल एंसों सिना बेदांग एम बोजेरु फे सिबुग्रा केते इन्योग के बोतुंग सिबुग्रा केत बोजेकोलो गिबा सार्कुल लोग एइंग अन्य तोलुंग कोपे बेदु बेदांग ए एंसों गिसों सिलां कुमादुंग सार्कुल सोग तोलुंग दोलुंग एंसों गिसों सिको पुते देलोग लुसी लुते PMGSY बदंग एम कॉम राकेते बोजिरु पकेट पक के बोकाई बदु बदंग एनसोन गिसोन सी कोका कुमा नाम सी एकुसेरंग दो नाम तीन नाम पुराम सामो एम बोजे को पादुं एम ला लुकान दो बदु बदंग सिबुग राकेट इन्यो के बो नाम सोग दु आदिर लगंग एम गिबा जेट पीएम मायुम तोविन बे स्कोनसान ऑथोरिटी लो रिपोर्ट एम बिलक के बोतुं इला आंके मुदिर नासिब सिबुग राकेट इतुम नाम दोलुंग सोक आई काम पोलेगांग पे बेतु बेतंग एम लगान रूप पे मोजुन का जुन के बोये कु एम लंकों लुकान दो बेटी बचाओ बेटी फोरा इलेन के बो नाम सोक इला डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आरा लो तवांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस एक का ना बोटी कोंगडे लो करियर काउंसिलिंग काम अवेयरनेस प्रोग्राम फे वो को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तवांग लो इगे बोतो पेबोसो डिस्ट्रिक्ट आरा लोक पोरी को स्कूल लोक लिंग को आकिंग पोरी को पे इमिन गेतो पेबोसो एडीसी रिंसिन लाता एसपी तासीदारंग

नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए आगे लिए चलते हैं आपके कार्यक्रम आज के कलाकार की ओर।

स्वागत है दोस्तों आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। जी हाँ, हमेशा की तरह मजेदार गीत जरूर लेकर आई हूँ आपके लिए, और साथ ही साथ आज हम एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सब बॉलीवुड के सिंघम कहकर जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन के बारे में। जानेंगे कैसे उन्होंने स्टारडम तक का अपना सफर तय किया। कहा यह भी जाता है कि शुरुआती दौर में वो फिल्मों में जब आना चाहते थे तो कई बड़े डायरेक्टर्स और निर्माता ने उन्हें चांस देने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड के सिंघम बन गए। आइए आज जानते हैं उन्हीं के बारे में। बॉलीवुड की दुनिया में अगर किसी अभिनेता का नाम मेहनत, सादगी और अभिनय के लिए सबसे पहले लिया जाता है तो

हैं अजय देवगन। तीन दशकों से भी ज्यादा लंबे करियर में अजय देवगन ने न सिर्फ एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाई बल्कि रोमांस कॉमेडी और इमोशनल किरदारों को भी खूब निभाया। उनकी सफलता इस बात का सबूत है कि अगर इंसान ईमानदारी और लगन से मेहनत करे तो वह हर मुमकिन हासिल कर सकता है। अजय देवगन का असली नाम विशाल वीरू देवगन है। उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ। अजय का परिवार पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उनके पिता वीरू देवगन सिनेमा के मशहूर एक्शन डायरेक्टर और स्टंटमैन रहे हैं, जबकि उनकी माँ वीना यानी कि वीना देवगन भी प्रोड्यूसर रही है। बचपन से ही अजय का माहौल फिल्मों से जुड़ा रहा। अक्सर वो अपने पिता को फिल्मों के लिए एक्शन सीन डिजाइन करते हुए देखते थे। यही वजह थी कि उनके मन में भी फिल्मों की दुनिया में आने की चाहत पैदा हुई। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू मुंबई से की और आगे की पढ़ाई मिठीबाई कॉलेज से पूरी की। अजय देवगन ने 1991 में फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म ने उनके हीरो के रूप में अपनाया। इस फिल्म में सभी ने उनके इस रोल को बहुत ही पसंद किया। आज भी लोग याद करते हैं क्योंकि फिल्म का सबसे मशहूर सीन था जिसे लोग अपने दिमाग से शायद कभी नहीं निकाल पाएंगे और वो सीन मेरे कहे बिना भी आप जानते हैं, अजय देवगन का दो मोटरसाइकिलों के ऊपर खड़े होकर एंट्री करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को याद जरूर होगा। यह स्टंट उस समय बेहद नया था और अनोखा था जिसने अजय को तुरंत सुर्खियों में ला दिया। दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और अजय को उनके पहले ही रोल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। अजय देवगन ने 90 के दशक में लगातार एक्शन फिल्मों में काम किया और खुद को एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। उन्होंने जिगर, विजयपथ, दिल जले, इश्क प्यार तो होना ही था इन सभी फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में बहुत बड़ी हिट रही। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का जिगर फिल्म से।

तो दोस्तों, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का सुपरहिट मूवी जिगर फिल्म से। दोस्तों, 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने अजय देवगन के करियर को नई दिशा दिलाई। सलमान खान और ऐश्वर्या राय जैसे सितारों के बीच अजय देवगन ने अपनी सादगी और गहरे अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कई ऐसी फिल्में की जो उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुआ, जैसे जख्म 1998 में रिलीज हुई और इस फिल्म के लिए उन्हें पहला नेशनल अवार्ड मिला, और फिर आई कंपनी 2002 में इसके बाद, और फिर उन्होंने 2000 में दीवाने भी किया था जिसमें उन्हें

उनके गंभीर अभिनय को सराहाया गया था। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 में उन्होंने इस फिल्म को भी किया, 2002 में रिलीज हुआ यह फिल्म। इसमें भगत सिंह का किरदार निभाकर अजय देवगन ने दूसरा नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था। अजय देवगन का नाम जब कॉमेडी फिल्मों में आया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह गंभीर और एक्शन हीरो इतनी सहजता से कॉमेडी कर पाएंगे, लेकिन गोलमाल सीरीज ने यह साबित कर दिया कि अजय देवगन हर रंग में ढल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस बार आनंद लेते हैं जख्म फिल्म के इस गीत का।

श्रोता, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का जख्म फिल्म से अलका याग्निक की आवाज में। और आज हम बातें कर रहे हैं अजय देवगन के बारे में। दोस्तों, अजय देवगन का निजी जीवन भी लोगों के लिए प्रेरणा ही है। 1990 के दशक में उनकी और अभिनेत्री काजोल की दोस्ती हुई। दोनों की जोड़ी को शुरू में अजीब माना जाता था, क्योंकि अजय जो है शांत और गंभीर स्वभाव के हैं, जबकि काजोल बेहद चुलबुली और हसमुख। लेकिन कहते हैं कि विपरीत स्वभाव वाले लोग ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। दोनों ने 1999 में शादी की और आज उनके दो बच्चे हैं, बेटी न्यासा और बेटा युग। अजय को एक जिम्मेदार पिता और परिवार प्रेमी इंसान के रूप में भी जाना जाता है। अजय देवगन को अब तक कई बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें शामिल है दो राष्ट्रीय पुरस्कार जख्म और भगत सिंह के लिए, चार फिल्मफेयर अवार्ड्स। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया।

0: अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
1: ओए पुत्तर नचना, भैन की सगाई च तो भाई नू नचना ही पैंदा है।
0: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
2: क्यों, तेरी भी तो भैन है।
3: ऐ गल चंगी बोली।
4: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
0: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

दोस्तों, प्यार तो होना ही था फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायलेक्ट न्यूज के बाद।

तो दोस्तों लीजिए हाजिर हो गई हूँ वादे के मुताबिक निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद तुरंत आपके लिए। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों की ओर।

श्रोता, आप आनंद ले रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और पहला गीत आपने सुना कोई मिल गया फिल्म से, और इस वक्त आप सुन रहे हैं इस गीत को चमेली फिल्म से।

दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को आओ प्यार करें फिल्म से, कुमार शानू की आवाज में।

श्रोता, इम्तिहान फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का यहीं पर समाप्त होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अब से बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: जी सर, आप भी अच्छे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ, ड्यूटी परेड में हूँ सर, जंगली नर्सरी के बीच में खड़ा हूँ सर, तो ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। धूप में जाने से थोड़ा धूप लगता है और लेकिन हवा अच्छा चल रहा है।
0: अच्छा,
1: और हवा भी ठंडा ठंडा चल रहा है।
0: क्या बात है जी जी, बहुत ही बढ़िया मौसम है
1: जी सर।
0: जी, तो बढ़िया मौसम में कौन सा बढ़िया गीत सुनाए आपको
1: आज? सुनाएंगे सर, फिल्म का नाम है लाल बादशाह और गाने का बोल है कोई दिल देने वाला, है कोई दिल लेने वाला। गायिका आशा भोसले, सुरेश भोसले गायक है और अमिताभ बच्चन, मनीषा कोइराला जी का फिल्म का गाना है। सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक साहब को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोताओं को, आकाशवाणी ईटानगर में जुड़े सभी उद्घोषक भाई बहनों को, हेलो एकता रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोताओं को ढेर काम सर।
0: तो इंद्रभान सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना
1: जी सर। फोन करने के सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्ते सर
0: जी। नमस्ते। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते सर, मैं जवाहरलाल बर्मन
0: जी,
1: काछार जिला से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ सर, थैंक यू सर आपको। और कैसे हैं आप?
0: जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, और आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: सर मैं भी ऊपर वाले के दुआ से ठीक ठाक हूँ सर।
0: जी जी, हमेशा ठीक ठाक रहिए, हम यही दुआ
1: जी,
0: करते
1: हाँ,
0: हैं।
1: हाँ जी, हाँ,
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो आज मुझे एक गाना सुनना चाहता हूँ। 1978 में रिलीज हुआ वो फिल्म, त्रिशूल फिल्म का एक गाना सुना दीजिए मुझे।
0: त्रिशूल फिल्म, वाह क्या बात
1: जी
0: है।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी, हाँ जी।
1: अभिनेता सचिन पिलगांवकर और अभिनेत्री पूनम धिलन जी ने वो अभिनय किया है। नितिन मुकेश और लता जी के जुगल शर्मी।
0: ओके जी।
1: गा पूछी गम गम, किसी की कम कम, गा पूछी गम गम, ये गाना सुना दीजिए। ये गाना को लिखा है गीतकार शाही लुधियानवी ने और सुर में सजाया है खयाम जी ने।
0: ओके जी।
1: ये गाना मुझे डेडिकेट करना चाहता हूँ सर, पहले तो आपके
0: ओके बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और है आशुतोष देवनाथ जी, प्रेमोजीत भाई है और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए सर।
0: अच्छा, सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। जवाहरलाल जी,
1: हाँ
0: हम आपको
1: सर,
0: बताना चाहेंगे, आप जिस तरह से गाने के विवरण देते हैं, किसने गाया, किसका
1: हाँ,
0: म्यूजिक है, किसने लिखा, क्योंकि
1: ठीक है बात,
0: जी हमें सिर्फ नहीं तो श्रोताओं को भी अच्छा लगता है,
1: ठीक है
0: क्योंकि
1: जी,
0: उन्हें
1: अच्छा
0: गाने के
1: अच्छा
0: बारे में काफी सारी
1: क्योंकि
0: जानकारी मिल
1: मैं
0: जाती
1: तो
0: है।
1: सर बचपन से एक गाना के लिए मैं तो पागल हूँ सर।
0: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। जी जी
1: स्कूल
0: जी
1: पढ़ने के टाइम से भी मैं तो रेडियो के पास हूँ। रेडियो सिलोन, रेडियो जो सिलोन है ना, सैलून,
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
1: वो रेडियो सैलून से मेरा ये रेडियो सुनना चालू हुआ,
0: अच्छा जी जी जी जी क्या बात है,
1: रेडियो
0: और
1: सैलून
0: आज
1: से।
0: तक आप सुन रहे हैं।
1: जी हाँ
0: ओह
1: जी,
0: जी जी
1: हाँ
0: जी ओके। तो जवाहरलाल जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, हम आपको
1: जी,
0: आपके
1: हाँ
0: पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: थैंक यू सर,
0: ओके
1: थैंक
0: थैंक यू।
2: किसी की कम कम, गापुची गापुची गम गम।

0: Gapuchi gapuchi gum gum. Kishiki kishiki gum gum. Gapuchi gapuchi gum gum.
1: हेलो फरमाइश।
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
2: जी सर, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
1: जी लोकेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हैं आप?
2: बस बिल्कुल सर जी, मस्त और स्वस्थ हैं सर बिल्कुल, और आपके आकाशवाणी जुड़े हुए हैं।
1: जी बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप लोगों के कॉल आते हैं।
2: नहीं सर, हमें भी अच्छा लगता है कि आप इतनी दूर रहकर भी हम आपकी आवाज के माध्यम और चैनल के माध्यम से आपको जानते हैं।
1: जी जी,
2: और
1: जी,
2: आपके बिल्कुल प्रसारण को हमेशा सुनते रहते हैं।
1: जी तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाया जाए?
2: गीत सर जी, मुझे आज तो मैं आपकी तरफ से कोई अच्छा सा गीत सुनना चाहता हूँ, आशा भोसले जी का, जो आपको पसंद हो। हम तो हमारी पसंद को हमेशा आपको बताते हैं, आप हमें गीत सुनाते हैं, पर हम भी चाहते हैं आपकी का भी कोई अच्छा सा गीत हो जो हमें पसंद।
1: ओके, तो लोकेंद्र जी जरूर सुनाएंगे हम, लेकिन इसे भी एक सरप्राइज की तरह ही रखते हैं। जब ये प्रोग्राम बजेगा तभी आपको पता चलेगा मैंने कौन सा गाना आपके लिए चुना है।
2: जी सर बिल्कुल।
1: जी जी जी जी, तो किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे आप इस सरप्राइज को?
2: शारदा प्रसाद जी है, राम बाबू मालवी जी है, योगेश जी है, गौतम राय बोली जी है, दिलीप पहुजा जी है, करणवीर पॉल जी है, और हमारे एक मित्र है जालंधर पंजाब से भी है, हमारे मित्र सोनू जी है।
1: ओके,
2: सभी के लिए गीत रहेगा सर।
1: ओके, तो लोकेंद्र जी हमसे जुड़ने
2: के लिए, आकाशवाणी ईटानगर के लिए भी रहेगा।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेंद्र जी, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना, आपके पसंद का नहीं, मेरे पसंद का गाना
2: आपको पसंद का गाना।
1: जी जी जी जी। ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, बहुत बहुत
1: जी जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी मैं सुनील झा बोल रहा हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी सुनील जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: बस बढ़िया सर।
0: ओके।
1: और गर्मी गर्मी पड़ने लगी अब।
0: हाँ जी,
1: चल रही है यहाँ तो।
0: ओके जी जी, गर्मी से अपने को बचाए रखिए, खूब पानी पीजिए, और अगर जरूरत ना पड़े तो घर से ना निकले।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी
1: सही बात है।
0: जी जी जी जी,
1: ऐसा ही मौसम है और निकले भी तो थोड़ा सूती या तौलिया वौलिया कुछ बांध के निकले हैं मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी,
1: पानी का इंतजाम करके रख के लेके जाए साथ में।
0: जी जी जी जी। तो आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: आज उसका लोफर फिल्म का सुना दो सर।
0: ओके, गाने के बोल
1: सर। उसके पहले में वो पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था।
0: ओके। जी जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी हमारे लोकेश वर्मा जी हैं, गौतम राय वोले जी हैं,
0: जी
1: तुकाराम यादव जी हैं, और प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, दिलीप आहूजा जी हैं, भोलालाल टेलर जी हैं, और हमारे गंगाधर सावनकर जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, और केसी सिंह राजपूत जी। हेलो फरमाइश एक रेडियो श्रोता के सभी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा।
0: सभी को डेडिकेट करना चाहिए
1: रहेगा।
0: जी जी, मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनील जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: सर मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: जी राम बाबू जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ सर।
0: ओके।
1: और परिवार वाले भी सब आनंद मंगल में हैं। और
0: जी।
1: सर आप सुनाओ, आप कैसे हो? आकाशवाणी परिवार कैसा है हमारा?
0: जी
1: और वहाँ का मौसम कैसा है?
0: हाँ जी राम बाबू जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आकाशवाणी ईटानगर परिवार भी बहुत ही बढ़िया है और मौसम यहाँ अभी ठीक ही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। जी जी जी
1: अरे वाह वाह वाह,
0: जी
1: किस्मत आपकी सर, यहाँ तो पसीने की बारिश हो रही है सर, 42 डिग्री पे पहुंच गया।
0: जी जी जी जी जी हाँ जी हाँ जी, गर्मी से अपने को बचाए रखिए राम बाबू जी।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ
1: सर,
0: जी
1: आपने बोल दी है तो हम बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे सर।
0: जी जी जी हाँ जी हाँ जी
1: और हमारे मित्र हैं लोकेंद्र वर्मा जी, और भी बहुत सारे दोस्त थे, वो उन लोगों ने भी अभी बताया था मेरे को कि रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ, हम आपने बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम बनाते हो और अच्छे से पेश करते हो, इसके लिए आपकी टीम को और आपको बहुत दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू जी, आप
1: जी
0: जैसे
1: सर।
0: श्रोताओं के कारण ही तो ये कार्यक्रम जिंदा है।
1: हाँ जी जी जी
0: जी जी जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये
0: हाँ
1: बात
0: जी
1: भी सही है सर। जब तक
0: हाँ
1: श्रोता नहीं फोन लगाएंगे तब
0: जी
1: तक प्रोग्राम के मजे नहीं आएंगे, आप तो
0: बिल्कुल
1: देखे रहोगे
0: हाँ जी
1: बोले
0: हाँ
1: फोन
0: जी
1: आएगा तब। हाँ ये बात तो सही है,
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: बिल्कुल आपका कहना सही है सर।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: कुल मिला के अगर बोले तो दोनों हाथ से ताली बजती
0: हाँ
1: है ना।
0: जी बात वही है कि
1: और आज मैं एक गाना सुनना चाहूंगा सर, संगीत फिल्म का कोई सा भी सुनवा दीजिए, या तो उसका टाइटल सॉन्ग भी सुनवाओगे तो चलेगा सर।
0: ओके, संगीत फिल्म का टाइटल सॉन्ग हाँ जी जरूर सुनाएंगे।
1: जी
0: और
1: सर
0: किन लोगों के साथ
1: बिल्कुल।
0: सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: हमारे लोकेंद्र वर्मा जी है और बहुत सारे जितने भी सुनने वाले सभी दोस्तों के लिए सर।
0: तो राम
1: जी
0: बाबू
1: सर
0: जी, हमसे
1: थैंक।
0: जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी सर नमस्कार।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार
1: सर जी, मैं रमेश साहब बोल रहा हूँ। सर जी
0: जी रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक ठाक है सर, बस आपका कार्यक्रम सुन रहे थे सर, बस नंबर मिल गया सर, फोन लगा दिए हमारे।
0: ओके, क्या बात है।
1: हम सर बिहार बांका जिला गांव चिकुरिया का रहने वाला हूँ, और सर जी इस बस जिला फरीदाबाद बल्लभगढ़ से आपका कार्यक्रम सुनते सुनते मैंने फोन लगा दिया सर जी।
0: अच्छा रमेश जी, आप पहली बार कॉल कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने कॉल किया था?
1: नहीं सर जी, इसमें आज मेरा पहले कॉल लगा है।
0: अच्छा, पहला कॉल है। ओके, तो सबसे पहले तो हम रमेश जी आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी सर जी, जी
0: जी जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए रमेश जी।
1: जी सर जी
0: जी
1: आज सर जी हमको सर जी बेटा फिल्म का गाना सुना दीजिए सर जी।
0: ओके, बेटा फिल्म का कौन सा गाना?
1: उसमें सर जी कोई एक गाना सुना दीजिए सर जी।
0: अच्छा, कोई भी एक गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ सर
0: जी,
1: जी,
0: हाँ जी, जरूर सुनेंगे। और रमेश जी, इस गीत को किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे आप?
1: बस सर जी, हम भी सुनेंगे सर जी, और आपको भी ये गाना सुनाएंगे, और ये लोकेंद्र वर्मा जी को सुनाएंगे, पूरा मेरा हेलो फरमाइश में जिन्हें टीम में कॉल करने वाले हैं सर जी।
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं? तो
1: जी
0: रमेश
1: सर
0: जी,
1: जी,
0: हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: और सुनाइए, कौन बोल रहे हैं?
1: राजू यादव बंदे लखनऊ पर।
0: राजू यादव जी,
1: जी।
0: ओके, आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं?
1: जी हाँ जी।
0: ओके राजू जी, हम सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी जी।
0: और आशा करते हैं कि इसी तरह से आप हमसे जुड़ते रहेंगे।
1: जी जी। मैं राजू यादव
0: जी,
1: राम उप्रहका श्री राम फुलेरा सरीला राठ मस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: ओके जी जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कहिए आप करते क्या है राजू जी?
1: हम कृषि का कार्य करते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी। अभी क्या बोया है आपने खेती में?
1: खेत खाली पड़े।
0: अच्छा, अभी कुछ बोया नहीं, कब तक बोएंगे फिर?
1: ये जुलाई में बोएंगे मूंगफली की खेती।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मूंगफली काफी अच्छी तादाद में होती होगी वहाँ पे?
1: जी जी जी।
0: ओके जी जी जी। तो राजू जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: तकदीर का तमाशा।
0: तकदीर का तमाशा फिल्म का कौन सा गाना?
1: मैं कितना खुश नसीब हूँ अपने बीवी बच्चों के करीब हूँ।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारा गीत आपने चुना है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: सभी रेडियो दोस्तों के साथ।
0: अच्छा, सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: ओके।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार। ईटानगर बात हो रही है मेरी
0: जी, आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर लाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, और सुनाइए अपने बारे में।
1: बस मैं तो जो है संगीत जो है हर समय सुनता रहता हूँ।
0: ओके जी,
1: गीत संगीत से जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि गीत संगीत सुनने से शक्ति बढ़ती है, एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है,
0: दिल को सुकून मिलता है।
1: और ईटानगर आकाशवाणी हम समय समय पर सुनते रहते हैं, लेकिन आज कॉल बहुत दिन बाद मैंने लगाया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, आपने कॉल लगाया और कॉल लग भी गया, आपको बहुत बहुत बधाई। तो कहिए आज मनोहर लाल जी, कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: जी, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है, टाइटल सॉन्ग ही सुना दीजिए।
0: अच्छा, टाइटल सॉन्ग ही सुनना चाहते हैं आप, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: ये हमारा एक रेडियो श्रोता ग्रुप है, एकता श्रोता ग्रुप
0: जी,
1: मैं उन सभी मेंबर्स के लिए
0: अच्छा
1: गीत सुनना चाहता
0: हूँ। ओके, सभी मेंबर्स को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो मनोहर लाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद जी, मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ।
0: जी श्रीपाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कैसे हैं आप?
1: जी सर ठीक, आप बताइए कैसे हो सर? काफी टाइम के बाद, 2-3 महीने बाद कॉल लगी है।
0: अच्छा चलिए, काफी दिन के बाद ही सही, आपने हमें याद तो किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, हम बहुत ही बढ़िया है। और सुनिए, आपके वहाँ मौसम कैसा है?
1: सर मौसम सर यहाँ पे जो गर्मी थोड़ी बढ़ गई है और धूप निकलती है, अभी जो बहुत तेज धूप निकली हुई है।
0: ओके जी जी जी जी, तो श्रीपाल जी कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सर फिल्म का नाम है 2 कलियाँ है, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई।
0: ओहो क्या गाना चुना है जी, और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: सर ये मेरे दोस्त हैं काफी, और मतलब मेरे दोस्त हैं लोकेंद्र जी हैं और योगेश जांगड़े जी हैं, गौतम जी हैं और दिलीप पाहुजा जी हैं।
0: इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं?
1: सुनते हैं।
0: ओके तो श्रीपाल जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: धन्यवाद।
0: ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी। नमस्कार
0: नमस्कार।
1: भवानी सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ
0: जी। भवानी सिंह जी,
1: राजस्थान।
0: ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप
1: जी? आपका भी धन्यवाद कॉल अटेंड करने के लिए।
0: जी जी जी हम तो जी
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ। और
0: ओके।
1: गर्मी शुरू हो गई हमारे तो।
0: हाँ जी, गर्मी तो यहाँ पे भी शुरू हो गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: जी जी आप बताइए, आप कैसे हो? आकाशवाणी परिवार आपका कैसा है?
0: हाँ जी, आकाशवाणी परिवार बहुत ही बढ़िया है, और जैसे ही आप लोगों का कॉल आता है और भी बढ़िया हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जुड़ के बातें करके। और इस फोन इन प्रोग्राम के तो हम वो कहते हैं ना, आदि हो गए हैं।
0: ओके,
1: जब
0: क्या
1: आपकी
0: बात है।
1: आवाज बजती है रेडियो पे और हमारे पसंदीदा गाने के साथ, आवाज के साथ, और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं
0: जी
1: सर।
0: जी जी जी जी तो अब से तो आप जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: सप्ताह में दो
1: बिल्कुल,
0: बार
1: ये
0: हो
1: कि फोन इन प्रोग्राम आपका जो कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी जी
0: तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: आज एक गाना है, कुछ तो है, फिल्म का नाम है कुछ तो है,
0: ओके
1: और गाने के बोल है डिंग डोंग डोले, ऐसा कुछ गाना है,
0: ओके जी, जरूर
1: सुना
0: सुनाएंगे।
1: दीजिएगा।
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: सिर्फ मुझे?
1: जी जी जी ये आपके
0: ओके
1: लिए है, मान लीजिए आपके लिए स्पेशल गाना है। आप बताइए इसमें गाने में क्या क्या क्या क्या मुखड़ा होगा, क्या क्या कुछ कहा हुआ है, उतना मुझे नहीं पता, लेकिन एक
0: अच्छा,
1: धड़के वाला एक ऐसा सॉन्ग है, मूड फ्रेश कर देगा
0: अरे
1: आपको।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है जी,
1: जी
0: जरूर सुनूंगा, और आप भी सुनिएगा मेरे साथ।
1: जी बिल्कुल सर।
0: जी, तो
1: ठीक
0: कॉल
1: है,
0: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद सर।
0: ओके।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बता दूं आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी कि कुछ पलों बाद, आप आनंद ले पाएंगे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। लेकिन उससे पहले चलिए श्रोता, आनंद लेते हैं कुछ हिन्दी फिल्मी गीतों का।

श्रोता, यस बॉस फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस बार हम आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज की ओर। चलिए श्रोता, अब आनंद लेते हैं कुछ पाश्चात्य संगीतों का।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम भूले बिशरे गीत का।

दुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना को।

श्रोता, एक बार फिर से याद दिला दो आप सभी को कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिछड़े गीतों का। तो बता दो आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का अंदाज फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

था फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म केसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के देरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।

0: ท่าน
1: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
2: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
3: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप। और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहने हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही है कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं। तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
2: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
3: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMA सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। फिर सातवां है जो उनकी मुख्य जांचें होती है, जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवां है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और टीडी वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवां है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
2: बिल्कुल। तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
3: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी, 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को, ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं, उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहने हैं और आशा बहने प्रेगनेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
2: बिल्कुल।
3: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
2: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
3: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त, मतलब 5th ANC, 5वां अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई, तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके लॉन्च किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 + 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त, सारा हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक, डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स। और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
2: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई, इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो?
3: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है
2: जी,
3: उसमें 130 था और आज वो 2022-24 का भी हाल ही में SRS डाटा आया है वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटरनल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले दो दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है वो हमारा 26 प्रति 1000 लाइव बर्थ था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1000 लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है UNIGME रिपोर्ट हम कहते हैं, उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70% मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ
2: जी, निश्चित तौर पर। और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गाँव में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं?
3: आशा वर्कर्स है ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। क्या बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो वो एक एक घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है, जांच के बाद उनका फॉलो अप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना मतलब कहां पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है
2: जी।
3: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है, तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलो अप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और ANM दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनता है
2: जी।
3: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है, तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, ANC चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के पर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है, तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 200 अन्य लोग घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के आमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जोबर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनियमन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पतनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और व्यय नियामक संबंधी सुरक्षित और पलपल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
0: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders. It includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for the earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Emir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait. The central government has given finance support of approximately 1.23 lakh crore rupees to the oil marketing companies to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to the government sources, the financial support has been provided to oil marketing companies is for the initial 78 days of the West Asia conflict. This financial support includes the excise duty cut. The sources said that the gold imports have seen a reduction. It added that the reduction is a result of higher import duty on gold and Prime Minister's appeal to the nation for not buying gold for at least 1 year. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinimay in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. The system is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Nambula International Stadium today. Ruturaj Gaikwad's superb century helped India A in posting a competitive 277 for 6 in stipulated 50 overs. Gaikwad posted a composed 101 from 114 deliveries. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान में 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की पुरुष डबल्स जोड़ी दूसरे दौर में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसकी कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
2: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत ने छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण के अवसर भी प्रदान किए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि एमटी मैरीवैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहाँ ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल-पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
2: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में लगभग 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यह स्थिति तालिबान की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्गेट गैगनर ने कहा कि 7 से 18 वर्ष की करीब 38 लाख लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। इनमें 26 लाख से अधिक किशोरियां शामिल हैं जिन्हें माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने की अनुमति नहीं है। सुश्री गैगनर ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों पर जारी प्रतिबंधों का अफगानिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त अरब की राजधानी रियाद स्थित भारतीय दूतावास के रॉयल कमीशन के सहयोग से रेगिस्तानी सामंजस्य सितार की धुने नामक एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन

0: आयोजन किया गया। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाया गया। संध्या का मुख्य आकर्षण सितारवादक उस्ताद शुजात हुसैन खान का प्रदर्शन था, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई को प्रतिबिंबित किया। संयुक्त अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर बल दिया। असम सरकार और यूरोपीय संघ ने आज गुवाहाटी में फ्लेवर, सुगंध और आयुष क्षेत्रों पर केंद्रित ब्लू वैली क्लस्टर का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सतत मूल्यों, श्रृंखलाओं, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्रों और औद्योगिक साझेदारियों के विकास में यूरोप, असम और व्यापक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाय, जैविक खाद्य पदार्थ, प्राकृतिक सुगंध और आयुष उत्पादों जैसे क्षेत्रों में यूरोप के साथ सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं। इसराइल और ईरान के बीच आज प्रत्यक्ष संघर्ष में आई अस्थायी शांति कायम होती दिखी, जिससे पश्चिम एशिया में फैली बड़े पैमाने पर सीमा पार झड़पों की तत्काल वापसी की आशंकाएं कुछ हद तक कम हो गईं। हालांकि व्यापक और स्थायी युद्ध विराम की संभावनाएं अनिश्चित बनी रहीं, क्योंकि अन्य मोर्चों पर विशेष रूप से दक्षिण लेबनान में लड़ाई जारी है। सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में भारत के एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी, पुरुष डबल्स जोड़ी, दूसरे दौर में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले दौर में अमेरिका के ऑर्डन क्वान ली और स्टेनली जिंक को 21-13 से हराया। हालांकि भारत की दूसरी पुरुष डबल्स जोड़ी अच्युत्यादित्य राव और अर्जुन रेड्डी पोचाना पहले दौर में ही बाहर हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी, पुरुष डबल्स जोड़ी, दूसरे दौर में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. Prime Minister Narendra Modi holds telephonic conversation with Amir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. UN warns Afghanistan risks creating a lost generation as 3.8 million girls remain out of school. And an Australian badminton open, India's M.R. Arjun and Hariharan Amsa Karunan storm into second round of men's doubles in Sydney. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Parvat Neni Harish, slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan.
3: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. India stands steadfast in rejecting terrorism in all its forms and manifestations.
1: The ambassador targeted Pakistan's political framework and the dominant role played by its military in governance, pointing to recent constitutional amendments as clear indicators of expanding military dominance over civilian authorities. He asserted that Pakistan possesses a protracted track record of holding its neighbors responsible for its own internal shortcomings.